0: बेनती की, मैं बेनती करता हाँ स्वामी की शरण विच आओ। मैं भी स्वामी की शरण विच हाँ हाँ
1: जीओ पिंड प्रभ आगे
0: भेटा ही रखनी है ते मेरे चार पैसे ही ना रखो अपनी जिंद रख दियो। उसके अगे भेटा रखनी है जिंद रख दियो अपना पिंड रख दियो शरीर रख दियो ए ताने और मन उसकी भेटा कर दियो जी उस नाल प्यार है सब कुछ ही उसके अगे रख दियो।
1: अनहद शब्द सुहावा
0: गुरु का शब्द ही अनहद शब्द है क्योंकि किसी का बनाया नहीं अनहद होंगे जेड़ा अपने आप तो हो वे ये शब्द है अनहद आया जैसी मैं आवे खसम की बाणी तैसरा करी ज्ञान में ला लो उसका हुक्म आया हूं आप बोलना जानता मैं कहया सब हुक्माओ जीओ इत हुक्म है ये गुरबाणी का शब्द श्री गुरु ग्रंथ साहब का शब्द अनहद शब्द है। इस तरह ही जीवन सुंदर बनता है क्योंकि शब्द सोहना है अनहद शब्द है सुहावा है ये जीवन भी सुहावा बना देता है।
1: सच मंगल हर जस गावा
0: सच्चा मंगल सच्चे दा मंगल ही सच्चा झूठे मंगल बंदे दा झूठा मंगल भी करांगे ओ झूठा ओदा मंगल भी झूठा हो जाएगा लेकिन सच्चे दा मंगल भी सच्चा है। कहंदे ने हरी दा जस गावे है
1: गुण गाए हर हर दुख नासे
0: उसते गुण गाउंदिया की होया व्याख्या थां थां बाणी च बाणी नाल भी कीती है गुण गावत तेरी उतर समैल बिनस जाए हम मैं बिख फैल उसते गुण गाउंदिया सारे दुखा का विनाश हो जाता है।
1: रहस उपजे मन घना
0: रहस हुंदा खुशी बड़ा आनंद मन विच घना आनंद घनी खुशी पैदा हो जाती है।
1: मन तन निर्मल देख दर्शन
0: तन निर्मल हुंदा कि मैल कोई नहीं रह गई मन निर्मल हुंदा कि पाप कोई नहीं रह गए तो तन निर्मल जित उपजित ना पाप मंदी विचार कोई नहीं रह गए बुरी विचार नहीं बुरा फुरना नहीं ते मन निर्मल मैल कोई नहीं ते तन निर्मल ते जीवो निर्मल बहरों निर्मल विचारां भी चंगिया कर्म भी चंगे पवित्र तन हो जिसते कर्म चंगे पवित्र मन हो जिसते विचार चंगे ये जेड़े विचार चंगे ये किवें होए जदों उसकी कृपा होई देख दर्शन उसके दर्शन वेख के मन तन पवित्र हो गए।
1: हाँ नाम प्रभ का मुख भणा
0: भणा अर्थ हुंदा उचारण करना ये दर्शन देखण दा फल होया मुंह तो उसका यस उचारना शुरू कर दिता उसका जस गाना शुरू कर दिता उसका नाम बोलना शुरू कर दिता।
1: होए रेण साधु प्रभ अराधु
0: मैं सब दे गुरु दी चरण तोड़ हां और प्रभु नु आराधा हां
1: अपने प्रभ पावा
0: ए दे ढंग प्रभु नु चंगा लगन सब दी चरण धूड़ बन जाओ गुरु दी चरण धूड़ परमात्मा दी आराधना करो जेड़ा करदा है अपने प्रभु नु पा जांदा है प्यारा लगदा है।
1: बिनवंत नानक दया तारो
0: कहंदे ने मेरे ते कृपा करो दया करो ते दया ए नहीं मंगी कि मैनु इलाका दे दियो दया ए नहीं मंगी इन्ना धन दे दियो नहीं दया एक ही मेरे ते करो केड़ी करो
1: सदा हर गुण गावा
0: सदा वास्ते मैं रब दे गुण गाउंदा रहा विसर नाही दातार अपना नाम दे हो गुण गावा दिन रात नानक चाओ ए चाह वो कहंदे ने अपना ते शौक एक होई किसे नु खान दा शौक किसे नु पाउन दा शौक गुरु साहब कहंदे ने अपना एक ही शौक है चाह तेरे गुण गाउन दा बस ए चाह है गुण गावा दिन रात नानक चाओ एहो ए मेरा चाह है ए पूरा करो। हां जी
1: गुर मिल सागर तरिया
0: जेड़ा गुरु नु मिल गया गुरु नु मिलन करके ओ संसार समुंदर इत्थे लहरां केड़ियां ने समुंदर च पानी दियां लहरां इत्थे काम क्रोध लोभ मोहंकार दियां लहरां अवगणा दियां उठदियां ने बंदा डुब जांदा है

परम सन्मान योग गुरु प्यारी गुरु सवारी साध संगत जीओ धन धन श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज सच्चे पातशाह दी अपार कृपा रहमत सदका सतसंगत करन दा सुभागा समा प्राप्त होया। सतगुरु जी दी अपार कृपा सदका सत्कार योग भाई गुरदास जी दियां वारां दी विचार लड़ीवार संखेप रूप में चल रही है। 37वीं वार दियां 10 पौड़ियां दी विचार हो चुकी है। अज 11वीं पौड़ी दी विचार आरंभ होनी है। आरंभता तो पहला रसना पवित्र करिए। सरबत संगतां प्रेम सहित गज के आखो जी वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। भाई गुरदास जी माता पिता दे परोपकारां दी कथा बयान करदे आ। माता पिता दा फर्ज की है, पुत्रां दा फर्ज की हुंदा, बच्चां दा फर्ज की है, उदाहरणा दे दे के सानू समझाउंदे ने। आओ प्यार दे नाल भाई गुरदास जी दे बचनां नूं पढ़ीए ते समझीए जी।

जेवड़े आप तेवड़ तेरी दात। जैन दिन करके कीती रात, खसम बिसार है ते कम जात। नानक नावै बाज सुनात, राग गूजरी महला चौथा। हर के जान सतगुर सतपुरखा, बिनो करो गुरपास। हम कीरे किरम सतगुर सरनाई, कर दया नाम प्रगास। मेरे मीत गुरदेव मोका राम नाम प्रगास। गुरमत नाम मेरा प्राण सिखाई, हर कीरत हमरी रहरास रहाओ। हर जन केवड बाग बडेरे, जन हर हर शरदा हर प्यास। हर हर नाम मिले त्रपतास है, मिल संगत गुण प्रगास। जिन हर हर हर रस नाम न पाया, ते भागहीन जम पास। जो सतगुर शरण संगत नहीं आए, त्रिग जीवे त्रिग जीवास। जिन हर जन सतगुर संगत पाई, तैन तुर मस्तक लिखिया लिखास। तन तन सतसंगत जित हर रस पाया, मैल जन नानक नाम प्रगास। राग गूजरी महला चौथा। हर के जान सतगुर सतपुरखा, बिनो करो गुरपास। हम कीरे किरम सतगुर सरनाई, कर दया नाम प्रगास। मेरे मीत गुरदेव मोका राम नाम प्रगास। गुरमत नाम मेरा प्राण सखाई, हर कीरत हमरी रहरास रहाओ। हर जन केवड़ भाग वडेरे, जिन हर हर शरदा हर प्यास। हर हर नाम मिले त्रिपतास है, मिल संगत गुण प्रगास। जिन हर हर हर रस नाम न पाया, ते भागहीन जम पास। जो सतगुर शरण संगत नहीं आए, त्रिग जीवे त्रिग जीवास। जिन हर जन सतगुर संगत पाई, तिन तुर मस्तक लिखिया लिखास। तन तन सतसंगत जित हर रस पाया, मैल जन नानक नाम प्रगास। राग गूजरी महला पंजवा। काहे रे मान चित वह उदम, जा आहर हर जियो परया। सैल पत्थर में जंतो पाई, ताका रिजक आगे कर धरिया।

तू पार ब्रह्म बेअंत बेअंत जी, तेरे क्या गुण आख बखाना। जो सेव है जो सेव है तुद जी, जन नानक तिन कुरबाना। हर त्याव है हर त्याव है तुद जी, से जान जुग मह सुखवासी। से मुक्त भये जिन हर त्याया जी, तैन तूटी जमकी फासी। जिन निरपौ जिन हर निरपौ त्याया जी, तिनका पाओ सब गवासी। जिन सेव्या मेरा हर जी, ते हर हर रूप समासी। से तन जिन हर त्याया जी, जन नानक तिन बल जासी। तेरी भगत भंडार जी, भरे बेअंत बेअंता। तेरे भगत सलाहन तुद जी, हर अनक अनेक अनंता। तेरी अनक करहें हर पूजा जी।

वह कर तार मोह रक्षा निज कर दे करे सब बैरन को आज संगरे पूर्ण हुई हमारी आस्था तोर भजन की रह प्यासा तुम्हें शाड़ कोई अवर न त्याऊ जो बर चाहो सो तुम ते पाऊ सेवक सिख हमारे तारी है चुन चुन सतर हमारे मारी है आप हाथ दे मुझे भरे आए मरण काल का त्रास निवरे आए हू जो

तुमहो पुरी चतुर्दश कंता काल पाई ब्रह्मा बबतरा काल पाई शिवजू अवतरा काल पाई कर विष्णु परकाशा सकल काल का किया तमाशा जवन काल जोगी शिव कियो वेदराज ब्रह्मा जू थियो जवन काल सब लोक सुवारा नमस्कार है ताहे हमारा जवन काल सब जगत बनायो देव दैंत जशन उपजायो आदि अंत कै अवतारा सोई गुरु समझियो हमारा नमस्कार तसी को हमारी सकल प्रजा जन आप सवारी शिव कन को शिव गुण सुख दियो सतरन को बल मोहबद कियो कट कट के अंतर की जानत भले बुरे की पीर पछानत चीटी ते कुंचर असथूला सब पर कृपा दृष्ट कर फूला संतन दुख पाए ते दुखी सुख पाए साधन के सुखी एक एक की पीर पछाने कट कट के बड़ बड़ की जाने जब

कछ भेद न जानत। महादेव कौ कहत सदा सेव, निरंकार का चीनत न पेव। आप अपनी बुद्ध है जेती, वर्णत पिन पिन तो हे तेती। तुमरा लखन

कार्य सब सवारना सब ना गल्ला समर्थ स्वामी सो क्यों मनो विसारे कह नानक मन मेरे सदा रहो हर नाले।

संत साजन भय सरसे पूरे गुरते जानी सुनते पुनीत कहते पवित सतगुर रहे।

बेनती है महान कृपा करेंद्र कुमार जी और सुंदर जी भगवान जी को बुलाया गया थोड़े तक आप जी की बाणी पढ़ते हैं सुनते हैं सोनिया बयान को लड़ जमा कर लिया जब मतलब श्री भगवान करने का सेवा करने का दर्शन जी बाणी पर श्री दर्शन से प्रदान कर लें बाणी का भाव ही संतान यज्ञों के विधाओं की कृपा करनी चाहते हैं करना जी दर्शन करेंगे संगतान की हाजिरी प्रदान करनी माननीय सब भावना दुनिया भर के अपने चरणों के आधार से रखना सही प्यारे मेहनत मेरा नाम करता है सतगुरु जी दरबार वालों आप जी की पावन चरणों की राष्ट्र भेट की गई है प्रदान करके लेकर हाजिर रहनी आशा भावना दोनों संसार पूरिया करके गर्दियों का लगा जीवन दर्शन करना सही प्यारे मेहनत मेरा दोस्तर नाम करता है नानक नाम सब्जी कला सेवी भावनी दोहरा गया सही काल की तब चलायो आनंद सब सिखन को हुक्म है

अवस्था हो जाए। जानते सुवाया था सब रहे आज गाय था शुद्ध हो जे निरंकार सुहाया कल सौ रहा जे जगावे तेन खबर होंगी नहीं तो अग्ञानता च सुते सुते ही उम्र बीत जाती है। जे ज्ञान जागर जगा दे फिर आत्मा की शुद्ध जड़ी परमात्मा प्राप्त करने की खबर प्राप्त हो जाती। नानक नजर करे जे अपने सतगुर मेलिया सोए पातशाह कहते जिन्हों से अपनी मेहर करे तो फिर पूर्ण सतगुराना मिला दिता है पूरे गुरु मिल जाते हैं। गुर प्रसाद जीवित मरे तो फिर मरना हो सतगुरु कृपा ना जीवित अहंकार वालों मरना करे फिर ही कदे भी मरना नहीं हुंदा है। पौड़ी जिहदा कीता सब कुछ हो गया तिसनु परवाह नहीं किस है केरी। जिस निरंकार का किया सारा कुछ हो रहा उस परमेश्वर नूं किसी की परवाह नहीं है। हर जो तेरा दिता सब को खावे सामोता जी कढ है तेरी। हे हरी जी सत्कार जो आपदा दिता सारे कोई खा पहन रहे और सारे तेरी मुताजी कढ रहे हैं जी आपदी अधीनता जी रहना करते हैं। ये तो दिनों साल आए सो सब कुछ पावे जिस नो कृपा निरंजन केरी। जड़े गुरमुख तेनों सलाउंदे वो सारा कुछ पा लेंदे तेरी सलौता उस तो ही करदा जिन्हां दे निरंजन निरंकार की कृपा मेहर की दृष्टि है। सोई साल सच्चा बन जा रजन वखर लदे हर नाम तन तेरी। ओहे सच्चा शाहूकार है ओहे सच्चा बन जा रहा मैंने व्यापारी है जिसने तेरी मेहर तेर छड़ दिती है। वो धनता जो आप जी की प्राप्ति करने वाले परमात्मा का नाम रूपी जो सौदा है उन्होंने लदना किया है। सब तेसे नो सलाहे हो संतो जिन दूजे भाव की मार बड़ारी ढेरी। हे संत जनों तुसी सारे मिलो उस निरंकार की सलौता सिफत करो जिसने कृपा करके द्वैश की ढेरी मार के ढा के बड़ारी मैंने नाश कर दिता है। सुनो कबीर मरता मरता जगमुआ मर पे ना जाना कोई ऐसी मरनी जो मरिया गौर न मरना हो। कबीर साहब कह रहे हैं मरदा मरदा सारा संसार मर गया पर असली मरण कोई जानता नहीं। असली मरना की है शरीर करके दुनिया मर रही है जड़ा मन विचों बकारा लो मरना है कोई है ऐसी मरनी जो मरिया गौर न मरना हो। जड़ा महात्मा संसार वालों मर गया ऐसी मरनी ऐसी मरनी नाल और जड़े मरदे आ उन्हों का फिर बहुत पुनः मरना नहीं है वो तो सदले जिंदे आ महला तीजा क्या जाना कि मर है गए कैसा मरना हो एक ही जाने किस तरह मरांगे साडा मरना क्यों होगा पता थोड़ी है किस तरह होना। जेकर साहब मन होना विसरै तो सहला मरना सो जे कहते मन चो परमात्मा ना भुले भुलाए तो फिर यह मरना सहला हो सफला हो जाता है। मरने ते जगत डर है जीविया लोड़ा सब कुछ ये संसार मरण तो डर रहे सारे जीना लोड़े चाहते हैं गुर पर सारी जीवित मर है हुक्म बूझ है सोए। जड़ा मनुख सतगुर कृपा ना जीवित अहंकार वालों मर जाता वो निरंकार के हुक्म समझदा अटल रहने वाला हुक्म नानक ऐसी मरने जो मर है ता सत जीवन होए। पातशाह ने जड़ा ऐसी मरने मर जाता अहंकार वालों मर जाता पूरा जीना साधम ने बड़ा श्रेष्ठ हुंदा है। पौड़ी जां आप कृपाल हो गया हर स्वामी तो अपना नाओ हर आप जपावे जो मालक कृपालू हो जाए अपना नाम आपे जपाउंदा नहीं ऐसा दलिद्रता का जुलड़ पिया रहिंदा उठे नहीं हुंदा। कल योग आ गया तो जुलड़ जिहा लिया बिच मगोरे हुए मरदाना जी कहिंदे महाराज कहिंदे कल योग है कहिंदे कल योग आ की है कहिंदे जुलड़िया दलिद्रता कहिंदे मोरियां हो गई कहिंदा जिहड़ा सवेरे उठदा मैं उहदे ते पा देना उठण ही नहीं दिंदा कहिंदे मोरियां कहिंदे जिहड़े तेरे सिख है ना उहनूं परवाह कर दे वह मार के और चक के जुलड़ जिहे नूं सुट दे उहनूं मोरियां कर दी पुछ नान करके तेरा नाम जपदे तेरे जिहड़े गुरसिख है उहनां दे मेरा प्रभाव नहीं पैंदा बाकी सारिआं ते मैं दलिद्रता का जुलड़ पाया। इस वास्ते आप कृपा करे नाम जपाउंदा आपे सतगुर मिल सुख देवै अपना सेवक आप हर पावै वह निरंकार साधुना मेरे के आप सुख दिता क्यों अपना सिव परमात्मा आपे पाँगा चंगा लगता है। क्यों महाराज पहले 3 बजे आप घंटी बजाते सब न उठना पैंता ना उठे तो पानी पा देना फिर महाराज के घोड़े की सेवा करता है गुरबचन सिंह उन्होंने ड्यूटी ला के
ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਨੀਂਦ ਬੜੀ ਪਿਆਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ,

और इन पंज पेसठ दे विच मैं गुरबाणी दी जेड़ियां जरूरियां विचारां सन गुरु दी बख्शिश द्वारा संगतां दे सामने पेश कीतियां ने। एक ओंकार सतनाम करता पुरख निर्भव निर्वैर अकाल मूरत आजूनी सैभं गुरु प्रसाद।

समाह ब्रह्म ज्ञानी पार उपकार उमाह ब्रह्म ज्ञानी के नाही तंथा ब्रह्म ज्ञानी ले तावत बंदा ब्रह्म ज्ञानी के होए सो फला ब्रह्म ज्ञानी सफल फला ब्रह्म ज्ञानी संग सगल उतार नानक ब्रह्म ज्ञानी जपै सगल संसार। ब्रह्म ज्ञानी एक ऊपर आस, ब्रह्म ज्ञानी जो है वो केवल वाहिगुरु उत्ते ही आश्रित है। ब्रह्म ज्ञानी का नहीं विनाश, जिवें वाहिगुरु जी सदीवी हैं उन्हां दा विनाश कदी नहीं हुंदा, इसी तरह ब्रह्म ज्ञानी का विनाश कदी नहीं हुंदा है। ब्रह्म ज्ञानी के गरीबी समाहा, ब्रह्म ज्ञानी दे

ನಿಮಕ ನಿಮಕ ಠಾಕುರು ನಮಸ್ಕಾರಿ ನಾನಕ ಓ ಅಪರಸು ಸಗಲ ನಿಸ್ತಾರೆ ಅಷ್ಟುಪದಿ ಮಿಥ್ಯಾ ನಾಹಿ ರಚನಾ ಪರಸು ಮನಮಯ ಪ್ರೀತಂದರಣ್ಯ ದರ್ಸು ಪರತಿರ್ಯಾರೂಪ ನಪೇಖ ನೇತ್ರ ಸಾಧಕೀಟಲ್ ಸಂತ ಸಂಘೇತ ಕರಣ ಸುಮೈ ಕಾಹೂ ಕೀ ನಿಂದ ಸಬ್ದೇ ಜಾಣೆ ಆಪುಷ್ಕ ಮಂದ ಗುರು ಪ್ರಸಾದ ವಿಖ್ಯಾ ಪರಹರೆ ಮನ ಕೀ ವಾಸನಾ ಮನ ತೇ ಕರೆ ಇಂದ್ರೀ ಯತ್ ಪಂಚ ದ್ರೋಹತೇ ರಹಿತ ನಾನಕ ಕೋ ಟುಮದೇ ಕೋ ಐಸಾ ಅಪರಸ ਮਨੁੱਖ ਜਨਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਨਾਮ ਜਪਣ ਵਾਸਤੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਇਆ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਨਾਮ ਜਪਦਿਆਂ ਜਪਦਿਆਂ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਹਰੀ ਦਾ ਨਾਮ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਅੰਕਿਤ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਮਹਾਰਾਜ, ਉਹ ਥਾਲੇ ਜੋ ਅੰਤਰ ਨਾਮ ਜੋ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਨਾਮ ਵਸਾ ਲਏ, ਸਰਮ ਮੈਂ ਪੇਖੈ ਭਗਵਾਨ, ਹਰੇਕ ਜੀਵ ਵਿੱਚ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਹੀ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰੇ। ਨਿਮਕ ਨਿਮਕ ਠਾਕੁਰ ਨਮਸਕਾਰੇ, ਸਵਾਸ ਸਵਾਸ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਨਮਨ ਕਰੇ। ਨਾਨਕ ਉਹ ਅਪਰਸ ਸਗਲ ਨਿਸਤਾਰੇ, ਉਹ ਜੀਵ ਮਾਇਆ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਹੈ, ਉਸਦੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਦੂਸਰੇ ਲੋਕ ਵੀ ਪਾਵ ਸਾਗਰ ਤੋਂ ਪਾਰ ਉਤਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਅਸ਼ਟਪਦੀ ਮਿਥਿਆ ਨਾਹੀ ਰਸਨਾ ਪਰਸ, ਜਿਸ ਦੀ ਰਸਨਾ ਨੇ ਕਦੀ ਝੂਠ ਨਹੀਂ ਬੋਲਿਆ। ਮਨ ਮੈਂ ਪ੍ਰੀਤ ਨਰਿਯਣ ਦਰਸ, ਜਿਸ ਪ੍ਰਾਣੀ ਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਦਰਸਨਾਂ ਦੀ ਆਸ ਹੈ। ਪਰ ਚਿਰਿਆ ਰੂਪ ਨਾ ਪੇਖੈ ਨੇਤਰ, ਜਿਸ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਨੇ ਕਦੀ ਪਰਾਇਆ ਰੂਪ ਨਹੀਂ ਵੇਖਿਆ। ਸਾਧਕੀ ਟੈਲ ਸੰਤ ਸੰਗ ਹੇਤ, ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਸਾਧਨਾ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ, ਮਨ ਕਰਕੇ ਸੰਤਾਂ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਰਿਹਾ। ਕਰਨ ਨਾ ਸੁਣੇ ਕਾਹੂ ਕੀ ਨਿੰਦਾ, ਜਿਸ ਦੇ ਕੰਨਾਂ ਨੇ ਕਿਸੇ ਦੀ ਨਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਸੁਣੀ। ਸਭ ਤੇ ਜਾਣੇ ਆਪਸ ਕਉ ਮੰਦਾ, ਜਿਸਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਨੀਵਾਂ ਮੰਨਿਆ ਹੈ। ਗੁਰਪ੍ਰਸਾਦ ਵਿਖਿਆ ਪਰ ਹਰੇ, ਉਸ ਗੁਰਮੁਖ ਨੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਮਾਇਆ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਰਹਿਤ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ। ਮਨ ਕੀ ਵਾਸਨਾ ਮਨ ਤੇ ਚਰੇ, ਮਨ ਦੀਆਂ ਇੱਛਾਵਾਂ ਨੂੰ ਉਸਨੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰੋਕ ਲਿਆ ਹੈ। ਇੰਦਰੀ ਜਿਤ ਪੰਚ ਦੋਖ ਤੇ ਰਹਿਤ, ਗਿਆਨ ਇੰਦਰੇ ਤੇ ਕਰਮ ਇੰਦਰੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਨ ਨੇ ਆਪਣੇ ਅਧੀਨ ਕਰ ਲਿਆ, ਤੇ ਐਸਾ ਕੋਈ ਪ੍ਰਾਣੀ ਜੋ ਇੰਦਰੀਆਂ ਨੂੰ ਅਧੀਨ ਕਰਕੇ ਸਹਿਜ ਸੁੱਖ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਇਆ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਦਰਸ਼ਨ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਉਹ ਅਨੇਕਾਂ ਹੀ ਤਕਲੀਫਾਂ ਤੋਂ, ਅਨੇਕਾਂ ਹੀ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਤੋਂ, ਅਨੇਕਾਂ ਹੀ ਦੁੱਖਾਂ ਤੋਂ ਬਚ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਹਜ਼ੂਰ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਐਸਾ ਕੋਈ ਵਿਰਲਾ ਹੀ ਪ੍ਰਾਣੀ ਹੈ। ਵੈਸਨੋ ਸੋ ਜਿਸ ਉਪਰ ਸੋ ਪ੍ਰਸੰਨ, ਬਿਸਨ ਕੀ ਮਾਇਆ ਤੇ ਹੋਏ ਭਿੰਨ, ਕਰਮ ਕਰਤ ਹੋਏ ਨੇ ਕਰਮ, ਕਿਸ ਵੈਸਨੋ ਕਾ ਨਿਰਮਲ ਧਰਮ, ਕਾਹੂ ਫਲ ਕੀ ਇੱਛਾ ਨਹੀਂ ਬਾਛੈ, ਕੇਵਲ ਭਗਤ ਕੀਰਤਨ ਸੰਗ ਰਾਛੈ, ਮਨ ਤਨ ਅੰਤਰ ਸਿਮਰਨ ਗੋਪਾਲ, ਸਭ ਉਪਰ ਹੋਵਤ ਕਿਰਪਾਲ, ਆਪ ਦ੍ਰਿੜ ਆਵੈ ਨਾਮ ਜਪਾਵੈ, ਨਾਨਕ ਉਹ ਵੈਸਨੋ ਪਰਮ ਗਤ ਪਾਵੈ। ਵੈਸਨੋ ਦਾ ਅਰਥ ਇਹ ਹੈ ਪਵਿੱਤਰ ਸਰੀਰ, ਭਗਤੀ ਨਾਲ ਜੋ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਹਜ਼ੂਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਭਗਤ ਉਹ ਹੈ, ਵੈਸਨੋ ਸੋ ਜਿਸ ਉਪਰ ਸੋ ਪ੍ਰਸੰਨ, ਜਿਸ ਤੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਪ੍ਰਸੰਨ ਹੋਣ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਭਗਤੀ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਤੇ ਹੀ ਪ੍ਰਸੰਨ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਬਿਸਨ ਕੀ ਮਾਇਆ ਤੇ ਹੋਏ ਭਿੰਨ, ਜੋ ਮਾਇਆ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਹੋਵੇ, ਮਾਇਆ ਦਾ ਲੋਭ ਨਾ ਕਰਦਾ ਹੋਵੇ,
कर्म करत होवे नेक कर्म, जो कर्म ते करे फल दी इच्छा ना करे। इस वैष्णव का निर्मल धर्म उस भगत दा विश्वास निर्मल है, दृढ़ता वाला है। काहू फल की इच्छा नहीं बाछ है, केवल वाहिगुरु दे दर्शना तो होर कुछ वाहिगुरु को नहीं मंगदा। केवल भगत कीर्तन संग राचै, भगती करदा है ते वाहिगुरु दे गुणा दा गायन करदा है। मन तन अंतर सिमरन गोपाल, मन और तन विच वाहिगुरु दा मंत्र रखदा है। वाहिगुरु वाहिगुरु वाहिगुरु दिन और रात जपदा है। सब ऊपर होवत कृपाल, जो सब जिया ते वाहिगुरु जी नू ही वेखदा है। आप दृढ़ अवर नाम जपावे, जो दृढ़ता पूर्वक आप वाहिगुरु जी का नाम जपदा है ते दूसरे प्राणी नू भी वाहिगुरु का नाम जपण वास्ते बेनती करदा है। नानक ओ वैष्णव परम गत पावे। हजूर कहंदे ने गुरु अर्जन साहिब महाराज को ऐसा भगत होवे ओही परम गति नू प्राप्त कर सकदा है। भगवती भगवंत भगत का रंग, सगल त्याग दुष्ट का संग। मन ते बिनसै सगला परम, कर पूजै सगल पार ब्रह्मा। साध संग पापा मल खोवै, जिस भगवती की मत उत्तम खोवै। भगवंत की टैल करे नित नीत, मन तन अर्पय विष्ण परीत। हर के चरण हृदय बसावे, नानक ऐसा भगवती भगवंत को पावे। भगवती भगवंत भगत का रंग, भगत ओ है जिसका मन वाहिगुरु की भगति नाल रंगिया होया होवे। सगल त्यागे दुष्ट का संग, दुष्ट तो इसका मन ही है। मन के को विचारा नु दबा के रखिया होवे, मन नु संयम च रखिया होवे, शब्द नाल प्यार करदा होवे, वाहिगुरु ते विश्वास करदा होवे। मन ते बिनसै सगला भरम, भरम और पेट तो न्यारा होवे। कर पूजै सगल पार ब्रह्मा, जिसने साध संगत विच आके सारिया ही रूपां विच वाहिगुरु जी नू व्यापक करके पूजिया होवे। साध संग पापा मल खोवै, इस भगवती की मत उत्तम होवे। संगत विच आके जिसने वाहिगुरु नाम जपदिया होया मन नू पापा तो दूर कर लिया होवे, इस भगवती की मत उत्तम होवे। उस भगत की मत विवेकशील हुंदी है। भगवंत की टैल करे नित नीत, वाहिगुरु की आज्ञा विच सदा सदा नेता प्रति रहे। मन तन अर्पय विष्ण परीत, मन और तन नू वाहिगुरु जी दी अमानत समझ के वरते। हर के चरण हृदय बसावे, इउं वाहिगुरु नाम जप के ओ वाहिगुरु जी नू अपने हिरदे विच वसा लेंदा है। नानक ऐसा भगवती भगवंत को पावे। हजूर कहंदे ने ऐसा कोई भगत वाहिगुरु जी नू प्राप्त हुंदा है। सो पंडित जो मन पर बोधे, राम नाम आत्म मैं सोधे। राम नाम सार रस पीवे, उस पंडित के उपदेश जग जीवे। हर की कथा हृदय बसावे, सो पंडित फिर जो नावे। वेद पुराण सिमरत बूझै मूल, सूखम में जाने असूल। चौं वर्णा को दे उपदेश, नानक उस पंडित को सदा आदेश। सो पंडित जो मन पर बोधे, ज्ञानवान ओ है जो अपने मन नू वाहिगुरु जी दे नाम नाल लाई रखे। राम नाम आत्म मैं सोधे, इतना वाहिगुरु दा नाम जपे के जपदा जपदा मन आत्मा दा स्वरूप हो जावे। राम नाम सार रस पीवे, आत्म रस नू अंगीकार करे ते अमृत रूपी वाहिगुरु दे रस नू लैके रसीला हो जावे।
उस पंडित के उपदेश जग जीवे, ऐसा कोई ज्ञानवान होवे जे वो उपदेश करे ता सारे जग दा सारे जीवां दा उधार हो सकदा है। हर की कथा हिरदे बसावे, वाहिगुरु जी दे गुणा नू जो अकथ हन उस नू हिरदे च बसावे। सो पंडित फिर जौन ना आवे, ऐसा कोई ज्ञानवान बाहर जोनिया विच नहीं आउंदा है। वेद पुराण सिमरत बूझै मूल, वेदा पुराणा की सिमरतियां दा मूल जो राम नाम है उसनू जाने। सूखम में जाने अस्थूल, वाहिगुरु जी आप सूक्ष्म अति सूक्ष्म हन। वाहिगुरु जी नू जानदा होया सारे जगत की रचना जो स्थूल रूप है उसनू वाहिगुरु विच ही जाने। चौं वरना को दे उपदेश, चौं वरना तो न्यारा होके वाहिगुरु नाम दा उपदेश देंदा होवे। नानक उस पंडित को सदा आदेश, गुरु साहिब फरमाउंदे ने अह जे ज्ञानवान तो अह जे गुरसिख तो असी सदके सदके जांदे हां। बीज मंत्र सर्व को ज्ञान, चौं वरना में जपे को नाम, जो जो जपे तिसकी गत होए, साध संग पावे जन कोए, कर कृपा अन

नानक ओ पुरख कहिए जीवन मुक्त प्रभु की आज्ञा आत्म हितावे संतोष रख के मन विच ते दृढ़ता नाल वाहिगुरु जी दा नाम जपे जीवन मुक्त सोई कहावे उसनों ही जीवन मुक्ति मिलती है। तैसा हरक तैसा उस सोग ऐसा गुरमुख प्यारा ना खुशी विच खुश हुंदा है ना सोग वेले सोगी हुंदा है। सदा आनंद ते ना ही वियोग उस सदा ही आनंद चित रहिंदा है उसनों कदे भी वैराग नहीं हुंदा। तैसा स्वर्ण तैसी उस माटी उस सोने ते मिट्टी नूं इको जिहा समझदा है भाव सोना मिट्टी वांगू ही जानदा है। तैसा अमृत तैसी बिक खाटी विष नूं भी ओ अमृत समझ के ही वाहिगुरु दी दात समझ के ही सेवन कर लेंदा है। तैसा मान तैसा अभमान मान और अभमान विच ओ रुचि नहीं रखदा इति वाहिगुरु दी दात समझ के स्वीकार कर लेंदा है। तैसा रंक तैसा राजान उस लई कोई गरीब होवे कोई राजा होवे दोवें इको ही वाहिगुरु जी दे बच्चे हन। जो वरताए साई जुगत ऐसे प्रेमी लई वाहिगुरु जी जो दे देण जिथे रखण जैसा रखण ज्यों रखण उसनों स्वीकारिया हुंदा है। नानक ओ पुरख कहिए जीवन मुक्त ऐसा जुगत जीवन वाला प्राणी गुरदेव जी कहंदे ने सदा मुक्ति नूं प्राप्त होया होया हुंदा है। पार ब्रह्म के सगले ठाउं जित जित घर राखे तैसा तिन नाउं आपे करन कराउण जोग प्रभु पावे सोई फुन होग।

पार ब्रह्म के सगले ठाओ वाहिगुरु जी सारिया जीआं विच आप ही व्यापक हन। जित जित घर राखे तैसा तिन नाओ, जिन्ना जीआं विच जैसा वाहिगुरु जी गुण पाउंदे ने गुणा दे अनुसार वैसे ही उन्हां दे नाओ हो जांदे हन। आपे करन करावन योग, आप ही परमेश्वर करदा भी ए ते कराउंदा भी ए। प्रभ भावे सोई फुन होग, वाहिगुरु जी नूं जो चंगा लगदा है सोई हुंदा है। पसरियो आप होए अनंत तरंग, वाहिगुरु जी अनेकां तरंगां विच कुदरत दे अनेकां रंगां विच आप ही वसे होए हन। लखे न जाए पार ब्रह्म के रंग, आप ही इक रंगी है आप ही बहु रंगी है। वाहिगुरु जी दे बहु रंग लखे नहीं जा सकदे हन। जैसी मत दे तैसा परगास, जिन्नी क मत जीव नु वाहिगुरु जी ने दित्ती है उतना की ओ वाहिगुरु जी स्वरूप नु जानदा है। पार ब्रह्म करता अविनाश, पार ब्रह्म परमेश्वर जो कर्ता पुरुष है आप ओ अविनाशी है, सदा स्थिर रहने वाला है। सदा सदा सदा दयाल, वाहिगुरु जी का स्वरूप दयालु है, सब जिया ते दया मेर करन वाला है। सिमर सिमर नानक भये निहाल, गुरु साहिब फरमाउंदे ने उस वाहिगुरु दे बच्चे सदा सदा वाहिगुरु जी का नाम जप के अनंत चित रहिंदे हन, अनंत चित रहिंदे हन।

0: केळबोदी रंगीली धरती दे वसनीक श्रोतियो, तुसीं इह प्रोग्राम FM रेडियो CIFK 94.3 तों सुन रहे हो। यह प्रोग्राम गुरुद्वारा साहिब वैष्णव सिंह सभा विलियम्स लेक तों प्रसारित किया जा रहा है। उम्मीद रखते हाँ कि इस प्रोग्राम नूं होर भी खोज भरपूर बनाउण लई तुसीं सानूं सुझाव दिंदे रहोगे।
1: साडे स्टूडियो दे टेलीफोन नंबर तां आप जी नूं पता ही है, जे नहीं तां ओह भी लिख लो जी। एरिया कोड 250-392-3074 अते फैक्स नंबर एरिया कोड 250-392-3075।
2: साडा ईमेल एड्रेस नोट करो जी, singhsabha2@gmail.com। एक बार फिर नोट करो जी, singhsabha2@gmail.com।
3: You are listening Sikh Radio broadcasting from Gurdwara Sahib Western Singh Sabha Williams Lake. Any comments and suggestions please call 250-392-3874.
4: Guru Ghar Vich Prachar De Tin Madhyam Mane Gaye Ne, Kirtan, Katha Aur Dhadi Prasang. Kirtan Bandagi Hai, Katha Gurbani Di Vichar Hai, और ढाडी प्रसंग इतिहास की रूपरेखा का चित्रण है। मेरा सुभाव कुदरत ने और गुरु की बख्शिश द्वारा गुरबाणी विचार का बनया कि यह विचार समूह घर और दूर दूर तक लोगों सुनाई देन तो उन्होंने प्रेरणा नाल मैं एक कैसेट टेप रिकॉर्ड कराए ने, जो पंज हैं जिन्हां दे च वक्ख वक्ख गुरबाणी दे मजमून ने, अलग अलग विषय ने, और इन्हां पंज कैसेट दे विच मैं गुरबाणी दी जिहड़ियां जरूरियां विचारां सन गुरु दी बख्शिश द्वारा संगतां दे सामने पेश कीतियां ने। इक ओंकार सतनाम करता पुरख निर्भव निर्वैर अकाल मूरत आजूनी सैभं गुरु प्रसाद।

0: ਕਾਮ ਮੋਖ ਉਹ ਹੈ ਧਰਮ ਤੇ ਮੋਖ ਜਿਸ ਦਾ ਸੰਬੰਧ ਅਧਿਆਤਮਕ ਨਾਲ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਿਉਂ ਜਿਉਂ ਬੰਦਾ ਧਰਮੀ ਬਣਦਾ ਹੈ ਤਿਉਂ ਤਿਉਂ ਉਸਨੂੰ ਮੋਕਸ਼ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੁੰਦੀ, ਉਸਦੇ ਬੰਧਨ ਟੁੱਟਦੇ ਨੇ। ਬੰਧਨ ਕੀ ਨੇ? ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦੇ ਬੰਧਨ ਨੇ, ਮਨ ਨੂੰ ਵਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਬੰਧਨ ਨੇ, ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਜਨਮ ਤੇ ਮਰਨ ਦਾ ਬੰਧਨ। ਜੈਸੇ ਜੈਸੇ ਬੰਦਾ ਧਰਮ ਦੇ ਗਹਿਰੇ ਤਲ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦੇ ਬੰਧਨ ਤੋਂ ਸਰੀਰ ਆਜ਼ਾਦ ਹੁੰਦਾ, ਵਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਬੰਧਨ ਤੋਂ ਮਨ ਆਜ਼ਾਦ ਹੁੰਦਾ, ਔਰ ਜਨਮ ਮਰਨ ਦੇ ਬੰਧਨ ਤੋਂ ਜੀਵ ਆਤਮਾ ਆਜ਼ਾਦ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਮੋਕਸ਼ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਮੋਕਸ਼ ਪਰਮ ਉਪਲਬਧੀ ਹੈ। ਮੋਕਸ਼ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਹੋਰ ਕੋਈ ਐਸਾ ਫਲ ਨਹੀਂ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਇਤਨਾ ਸਵਾਦ ਹੋਵੇ, ਰਸ ਹੋਵੇ। ਤੋ ਜਿਉਂ ਜਿਉਂ ਧਰਮ ਵੱਧਦਾ ਹੈ ਤਿਉਂ ਤਿਉਂ ਮੋਕਸ਼ ਵੱਧਦਾ, ਔਰ ਜਿਉਂ ਜਿਉਂ ਧਨ ਵੱਧਦਾ ਹੈ ਤਿਉਂ ਤਿਉਂ ਕਾਮ ਵੱਧਦਾ। ਸਿਰਫ ਧਨ ਹੈ ਤੇ ਧਰਮ ਨਹੀਂ, ਐਸੇ ਬੰਦੇ ਦਾ ਕਾਮੀ ਹੋ ਜਾਣਾ, ਅਤਿ ਕਾਮੀ ਹੋ ਜਾਣਾ ਕੁਦਰਤੀ ਗੱਲ। ਤੋ ਜੈਸੇ ਜੈਸੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਧਨ ਵਧੇ ਨਾਲੇ ਧਰਮ ਵੀ ਵਧੇ, ਤਾਂ ਹੀ ਸੰਤੁਲਨ ਕਾਇਮ ਰਹੇਗਾ, ਵਰਨਾ ਤਵਾਜ਼ਨ ਡਾਵਾਂਡੋਲ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਸੰਤੁਲਨ ਵਿਗੜ ਜਾਏਗਾ। ਜਿਤਨੀ ਸੀਮਾ ਵਿੱਚ ਧਨ ਵਧੇ ਉਤਨੀ ਹੀ ਸੀਮਾ ਵਿੱਚ ਧਰਮ ਵਧੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ? ਜਿਤਨੀ ਸੀਮਾ ਵਿੱਚ ਕਾਮ ਵਧੇਗਾ ਉਤਨੀ ਸੀਮਾ ਵਿੱਚ ਮੋਕਸ਼ ਵੀ ਵਧੇ। ਔਰ ਇਹ ਚਾਰ ਪਦਾਰਥ ਮੰਨੇ ਗਏ ਨੇ, ਚਾਰ ਪਦਾਰਥ ਦੇ ਮਿਲਦਿਆਂ ਹੀ ਮਨੁੱਖ ਮਾਲਾਮਾਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਦੋ ਪਦਾਰਥ ਸੰਸਾਰ ਦਾ ਸੁੱਖ ਪੈਦਾ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਔਰ ਦੋ ਪਦਾਰਥ ਅਧਿਆਤਮਕ ਰਸ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਆਤਮਾ ਦੇ ਖੇੜੇ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਆਤਮਕ ਪ੍ਰਸੰਨਤਾ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਤੇ ਠੀਕ ਹੈ ਕਿ ਮਨੁੱਖੀ ਤਨ ਵਾਸਤਵਿਕ ਤਿੰਨ ਹਸਤੀਆਂ ਦਾ ਮਜਮੂਆ ਹੈ, ਸਰੀਰ ਮਨ ਆਤਮਾ। ਸਰੀਰ ਦਾ ਜੋ ਸਰੀਰ ਨਾਲ ਮਿਲਣ ਹੈ, ਪਦਾਰਥ ਦਾ ਜੋ ਪਦਾਰਥ ਨਾਲ ਮਿਲਣ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਰੀਰ ਸਵੈਮ ਇੱਕ ਪਦਾਰਥ ਹੈ, ਪੰਜ ਤੱਤਾਂ ਦਾ ਪੁਤਲਾ ਹੈ, ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੀ ਬਣਤਰ ਹੈ, ਪਦਾਰਥ ਦਾ ਜੋ ਪਦਾਰਥ ਨਾਲ ਮੇਲ ਹੈ, ਸਰੀਰ ਦਾ ਜੋ ਸਰੀਰ ਨਾਲ ਮੇਲ ਹੈ, ਇੱਥੋਂ ਜੋ ਰਸ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਇਸ ਨੂੰ ਕਾਮ ਰਸ ਕਹਿੰਦੇ। ਮਨ ਦਾ ਜੋ ਮਨ ਨਾਲ ਮੇਲ ਹੈ, ਇਸ ਮੇਲ ਤੋਂ ਜਿਸ ਰਸ ਦਾ ਜਨਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਇਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਮ ਰਸ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਆਤਮਾ ਦਾ ਜੋ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨਾਲ ਮੇਲ ਹੈ, ਇਸ ਮੇਲ ਤੋਂ ਜਿਸ ਰਸ ਦਾ ਜਨਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਇਸ ਨੂੰ ਭਗਤੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਭਗਤੀ ਰਸ ਸਿਖਰ ਦਾ ਰਸ ਹੈ, ਭਗਤੀ ਰਸ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਚੇ ਦਾ ਰਸ ਹੈ। ਕਾਮ ਰਸ ਪਸ਼ੂਆਂ ਦੀ ਦੁਨੀਆਂ 'ਚ ਵੀ ਹੈ, ਪੰਛੀਆਂ ਦੀ ਦੁਨੀਆਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੈ, ਕੀੜੇ ਮਕੌੜਿਆਂ ਦੀ ਦੁਨੀਆਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੈ। ਅਗਰ ਇਸ ਰਸ ਤੋਂ ਮਨੁੱਖ ਉੱਚਾ ਨਹੀਂ ਉੱਠਿਆ ਤਾਂ ਫਿਰ ਪਸ਼ੂਆਂ ਦੇ ਤਲ ਤੇ ਖੜਾ। ਮਨੁੱਖਤਾ ਦੇ ਤਲ ਤੇ ਬੰਦਾ ਉਦੋਂ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਦ ਪ੍ਰੇਮ ਦੀ ਦੁਨੀਆਂ 'ਚ ਪਹੁੰਚਦਾ। ਤੋ ਸਿਰਫ ਕਾਮਨਾ ਦਾ ਸੰਬੰਧ ਗੁਰੂ ਨਾਲ ਜੋੜਨਾ, ਇਹ ਸੰਬੰਧ ਕੋਈ ਬਹੁਤ ਉੱਚਾ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਗੁਰੂ ਦੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਜੋੜ ਲੈਣੇ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਮਨ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਮਨ ਜੋੜ ਲੈਣਾ, ਤੋ ਦੋ ਦਿਲਾਂ ਦੇ ਜੁੜਦਿਆਂ, ਦੋ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੇ ਜੁੜਦਿਆਂ ਪਿਆਰ ਦਾ ਜਨਮ ਹੁੰਦਾ। ਜਿਸ ਦਿਨ ਦੋ ਵਿਚਾਰ ਇੱਕ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਪਿਆਰ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਉੱਥੇ ਸਨੇਹ ਦਾ ਜਨਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਪ੍ਰੇਮ ਤੇ ਸਨੇਹ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਤ੍ਰਿਪਤੀ ਦੇ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਜਿਨੀ ਚਾਖਿਆ ਪ੍ਰੇਮ ਰਸ ਸੇ ਤ੍ਰਿਪਤ ਰਹੇ ਆਧਾਏ। ਪ੍ਰੇਮ ਦੇ ਨਾਲ ਤ੍ਰਿਪਤੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਪਰਮ ਆਨੰਦ ਪਰਮ ਪ੍ਰਸੰਨਤਾ ਉਦੋਂ ਹੀ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਜਦ ਆਤਮਾ ਦਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨਾਲ ਮੇਲ ਹੋਵੇ, ਆਤਮਾ ਦਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨਾਲ ਮਿਲਣ ਹੋਵੇ। ਤੋ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦਾ ਇਹ ਫਰਮਾਨ, ਪ੍ਰਭੂ ਚਿੰਤਨ ਦੇ ਨਾਲ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਝੋਲੀ ਚਾਰ ਪਦਾਰਥਾਂ ਨਾਲ ਭਰ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਧਨ ਵੀ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ, ਕਾਮਨਾ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਵੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਪ੍ਰਭੂ ਚਿੰਤਨ ਦੇ ਨਾਲ ਧਾਰਮਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਜੋ ਨਾਮ ਦਾ ਰਸ ਆਨੰਦ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਝੋਲੀ 'ਚ ਪੈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਔਰ ਮੋਕਸ਼ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਫਰਮਾਨ, ਚਾਰ ਪਦਾਰਥ ਜੇ ਕੋ ਮੰਗੇ ਸਾਧ ਜਨਾ ਕੀ ਸੇਵਾ ਲਾਗੇ। ਐ ਬੰਦੇ, ਜੇ ਤੈਨੂੰ ਚਾਰ ਪਦਾਰਥ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੇ ਤੂੰ ਆਪਣੀ ਝੋਲੀ ਭਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਸਤਸੰਗ ਵਿੱਚ ਆ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਵਿੱਚ ਆ। ਗੁਰੂ ਦੀ ਸ਼ਰਨ, ਸਤਸੰਗ ਦਾ ਰਸ ਔਰ ਗੁਰਮਤ ਦੀਆਂ ਵਿਚਾਰਾਂ ਤੇਰੇ ਇਸ ਝੋਲੀ ਨੂੰ ਚਾਰ ਪਦਾਰਥਾਂ ਨਾਲ ਭਰ ਦੇਣਗੀਆਂ। ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਪਦਾਰਥਾਂ ਤੋਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਉੱਚਾ ਪਦਾਰਥ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਜਿਸ ਵਕਤ ਧਨ ਤੇ ਕਾਮਨਾ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਹੋ ਜਾਏ, ਸੰਸਾਰ ਤੋਂ ਮਨੁੱਖ ਉੱਚਾ ਉੱਠਦਾ, ਸਭ ਕੁਝ ਮਿਲ ਗਿਆ। ਤੇ ਜਿਸ ਦਿਨ ਧਰਮ ਤੇ ਮੋਕਸ਼ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਮਿਲ ਗਿਆ, ਉਸ ਦਿਨ ਤੇ ਬੰਦਾ ਉਸ ਸਿੰਘਾਸਣ ਤੇ ਜਾ ਬੈਠਦਾ ਜਿਸ ਸਿੰਘਾਸਣ ਤੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਆਪ ਬੈਠਾ ਹੈ। ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਕਹਿੰਦੇ, ਅਬ ਤੋ ਜਾਏ ਚੜੇ ਸਿੰਘਾਸਨ, ਮਿਲੇ ਹੈ ਸਾਰੰਗ ਪਾਣੀ, राम कबीरा एक बहे हैं कोई न सके पचा। एक ओंकार सतनाम करता पुरुख निर्भव निर्वैर अकाल मूरत आजूनी सैभं गुरु प्रसाद। मनुखी दुनिया विच धर्म की लोड़ इसे तरह ही है जैसे कि अन्न पानी की लोड़ है। पंज तत दा बनिया ए पुतला अन्न पानी तो बिना नहीं रह सकता, पर सूक्ष्म देही जो साड़ी जीव आत्मा है वो प्रभु चिंतन तो बिना नहीं रह सकती। धर्म की है इसके उत्ते अनंत काल तो बहस मुबासे और विचारां होंदियां रहीं। धर्म दा अखरी अर्थ है धारण करना, जिसने धारण कीता होया है वो परमात्मा। धारण करना धर्म है। जिस असूल नियम दे मुताबिक संसार दी सिरजना हुई, संसार दा टिकाओ है, संसार खड़ा है, उत्पत हो रहा है, मिट रहा है, बन रहा है, इसनु धर्म कहंदे। धारण कीता होया तो इसकी लंबी चौड़ी विचारधारा धर्म ग्रंथां विच अपने अपने ढंग दे नाल मौजूद है। एक ढंग साहिब श्री गुरु नानक देव जी महाराज दा भी है जो बड़ा अदुती है। पुराणक मिथिहास है कि इस जमीन नूं एक धोले बैल ने चुकया होया और एक सिंह दे उपर ही चुकया होया। जद वो थक जांदा है तां फिर वो दूसरे सिंह ते चुकदा है। इस तरह जमीन दे भौंचाल आ जांदे ने, जलजले आ जांदे। साहिब श्री गुरु नानक देव जी महाराज ने इसते तर्क ते नहीं कीती, पर एक सवाल खड़ा कीता। तर्क करना होर गल है, सवाल खड़ा करना होर गल है। महाराज कहंदे ने फिर ये दसो, जमीन नूं चुकिया होया धौले बैल ने ते धौला बैल किथे खड़ा है? जे आखो किसे जमीन ते खड़ा है फिर वो जमीन किसते खड़ी है? जे आखो धौले बैल ते खड़ी है फिर वो धौला बैल किथे खड़ा है? तो इस तरह गल किथे मुकावांगे? धरती होर परे होर होर किसे भार तले कौन जोर? एक धरती ते है ने, अनंत धरतियां ने, फिर अनंत धौले बैल होने चाहिए ने, पर उन्हां धौले बैलां दे थले भी फिर धरतियां होनियां चाहिए ने। ये विचार सच्चाई की कसौटी ते पूरी नहीं उतरती, और चूंकि धर्म ग्रंथां दे विच है इस वास्ते श्रद्धा की भावना नाल इसकी खोज करनी पेगी। गुरु नानक ने सही राज जगत के सामने रखे, धौल धर्म दया का पूत। दरअसल धौला बैल धर्मी है, जिसने जमीन नू चुकिया होया है। ग्रह नक्षत्र सूरज चंद तारे प्रभु दी बनाई हुई एक मर्यादा विच अटल खड़े ने, धर्म अनुसार खड़े ने, और धर्म ही धौला बैल है। धर्म नू धौला क्यों आख्या? धौले तो मुराद चिट्टा, और इसकी बहुत लंबी चौड़ी व्याख्या भारतीय धर्म ग्रंथां विच मौजूद है, श्वेत वस्त्रां दी, चिट्टे वस्त्रां दी। धर्मी मनुख दे अंदर एक चिट्टी धारी बनती है जो बाहर तो चिट्टे रंग तो बड़ा प्रभावित होंदा है। जेड़ा मनुख बाहर चिट्टे रंग तो बहुत प्रभावित हो, बड़ी कशिश उसके अंदर पैदा हो, समझ लेना चाहिए उस दे अंदर भी कोई चिट्टे रंग दी धारी है। और चिट्टा रंग धर्म दा मनिया गया, धौल धर्म दया का पूत। किधरे जंग हो रही होवे तो चिट्टे रंग दा कपड़ा झुलांदे ने, ए अमन ते सुला दा चिन्ह, सुला दी निशानी मनी जांदी है। धर्मी बंदा अमन पसंद होंदा है, धर्मी बंदा सुला कुन होंदा है। धर्मी मनुख दे अंदर मैत्री दी भावना होंदी है, धर्मी मनुख जोड़ना जानदा है, तोड़ना नहीं। धौल धर्म दया का पूत, यह जड़ा धर्म है गुरु नानक की दृष्टि विच इसकी मां दया है, यह प्रभु की दया तो जन्म है। मनुख दे अंदर भी जद धर्म दा जन्म होवेगा तो दया तो बिना नहीं हो सकदा। मूल बिना शाखांकत आए, जड़ ही नहीं, मूल ही नहीं, तो पत्ते किथे, फुल किथे, फल किथे। धर्म फल है, ते धर्म दे फल दी जड़ की है, मूल की है। साढ़े देश के एक प्रसिद्ध कवि महात्मा तुलसी का कहना है, तुलसी दया धर्म का मूल है, पाप मूल अभिमान, तुलसी दया न छोड़ी है, जब लग घट में पा। धर्म का मूल की है दया। जिथे दया नहीं, धर्म का जन्म नहीं होगा। गुरु नानक देव जी महाराज दया का पुत, धर्म नो दया का पुत्र कहते हैं। दया इसकी मां है। जे दया इसकी मां है तो फिर इसका पिता संतोख थाप रखिया जिन सूत। इशारा, धर्म का पिता है संतोख और धर्म की मां है दया। दया तो सेवा भाव का जन्म होता है और संतोख तो सिमरन का जन्म होता है। दया नहीं तो मनुख सेवा नहीं कर सकेगा और संतोख नहीं तो मनुख सिमरन नहीं कर सकेगा। सेवा करके संसार नाल जुड़ना है और सिमरन करके निरंकार नाल जुड़ना। सिमरन कौन करेगा? संतोखी। सेवा कौन करेगा? दयालु। दया ते संतोख दे जोड़ तो जिस धर्म का जन्म होता है वो सेवा ते सिमरन ते खड़ा है। गुरु घर की बड़ी सुंदर व्याख्या है। इस वास्ते पातशाह ने संगत ते पंगत बना दिती, बे संगत दे सिमरन और पंगत दे सेवा। पंगत दे सेवा ओ करेगा जिथे दया होवेगी, संगत दे सिमरन ओ करेगा जिथे संतोख होगा। असी संसार नालों नहीं टुटना, दयाहीन मनुख संसार तो टुट जाते हैं। साढ़े देश के अणगिनत महात्मा संसार तो किनारा कश हो गए, एक पासे हो गए और ये कहने लगे हर एक दे अपने अपने कर्मां दा भोग है भोगण। दरअसल दयाहीन मनुखां तो इना विचारां दा जन्म होया। दयालु सेवा भाव से तत्पर हो जांदा है, अगले दा दुख वंडांदा है, अगले दा दर्द वंडांदा है। तो दया तो सेवा दा जन्म और संतोख तो सिमरन दा जन्म। सिमरन करके करतार नाल जुड़ना, सेवा करके संसार नाल जुड़ना, यही गुरमत्ती देन है, यही गुरु नानक दा दर्श है। धर्म नूं कह दिता है इहदा रंग चिट्टा है। दरअसल मनुख जिस जिस रंग तो प्रभावित होंदा है उस तो उसके सुभाव दा पता चलता है। और अजोके मनोविज्ञान ने इस गल की बड़ी प्रबल तस्दीक कर दिती है कि रंगा दा मनुख दे उत्ते बहुत गहरा असर पैंदा है और मनुख दे अंदर भी कुछ रंग ने। धर्मक दुनिया दे परमात्मा दी दुनिया दे कुछ विशेष रंग मन्ने गए ने, जिन्हां रंगा दा जिक्र गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज दे बकायदा आउंदा है। गुरु नानक देव जी महाराज दा कहना है, रत्ता पैनन मन रत्ता, सुपे दी सतदान, नीली स्याही कदा करनी, पैरन पैर ध्यान, कमर बंद संतोख का, धन जो बन तेरा नाम, बाबा और पैनन खुशी खुआर, जित पै दे तन पीड़िए, मन में चले विकार। सतगुरु दा फरमान भी जो मन परमात्मा दे नाम विच रत्ता गया ए असी लाल रंग दी पोशाक पहनी है, क्योंकि जिस वक्त मन लीन होंदा है, मन विच प्यार पैदा होंदा है, ता अंदर जिहड़ी धारी बनती है वो लाल रंग दी बनती है। साढ़े देश दे तमाम साधु समाज ने अगर गैरक बस्त्र पहन लै, गेरवे रंग दे कपड़े पहन लै, ता ए ऐवें नहीं सी, बल्कि इहदे विच बहुत एक गहरी दृष्टि सी। अंदर प्यार पैदा होया, ईश्वर की खिच पैदा हुई, तो जिस रंग की धारी बनी वो लाल सी। लाल कपड़िया का मोह जाग पिया, गेरवे बस्त्रा का मोह जाग पिया। इस लाल रंग की व्याख्या गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज बहुत है। कवन बनेरी तेरी लाली, ਕਵਨ ਰੰਗ ਤੋਂ ਭਈ ਗੁਲਾਰੀ। ਬਿਸਮ ਬਿਸਮ ਬਿਸਮੇ ਹੀ ਭਈ ਹੈ ਲਾਲ ਗੁਲਾਲ ਰੰਗਾਰੇ, ਕਹੁ ਨਾਨਕ ਸੰਤਨ ਰਸ ਆਈ ਹੈ ਜਿਉਂ ਚਾਕ ਗੂੰਗਾ ਮੁਸਕਾਰੇ। ਯਾ ਲਾਲ ਰੰਗ ਇਸਕੋ ਲਗਾ ਜਿਸਕੇ ਵੱਡ ਭਾਗਾ, ਮਹਿਲਾ ਕਦੇ ਨਾ ਹੋਵੇ ਨੈ ਲਾਗੇ ਦਾਗਾ। ਇਸ ਲਾਲ ਰੰਗ ਦਾ ਬਾਰ ਬਾਰ ਜ਼ਿਕਰ ਆਵਣਾ ਇਹ ਸ਼ਾਇਰਾਨਾ ਤਖੈਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਵੀ ਦੀ ਕਲਪਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਬਲਕਿ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਸੱਚਾਈ ਹੈ। ਜੋ ਮਨ ਨਾਮ ਵਿੱਚ ਰੰਗਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਰੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਅੰਦਰ ਲਾਲ ਰੰਗ ਦੀ ਧਾਰੀ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਕਵੀ ਸਿਰਮੌਰ ਨੰਦ ਲਾਲ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਵਿਅਕਤ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ, ਗੁਲਾਲ ਅਫਸ਼ਾਨੀ ਅੱਜ ਦੱਸੇ ਮੁਬਾਰਕ, ਜ਼ਮੀਨੋ ਆਸਮਾਂ ਰਾ ਸੁਰਖਰੂ ਕਰ। ਐ ਮੇਰੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ, ਐ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਗੁਲਾਲ ਕੀ ਛੜਕਿਆ ਕਿ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਆਸਮਾਨ ਨੂੰ ਸੁਰਖ ਰੰਗ ਵਿੱਚ ਰੰਗ ਛੱਡਿਆ। ਗੁਲਾਲ ਲਾਲ ਰੰਗ ਹੁੰਦਾ, ਗੁਲਾਲ ਗੁਲਾਬੀ ਰੰਗ। ਗੁਲਾਲ ਅਫਸ਼ਾਨੀ ਅੱਜ ਦੱਸੇ ਮੁਬਾਰਕ, ਜ਼ਮੀਨੋ ਆਸਮਾਂ ਰਾ ਸੁਰਖਰੂ ਕਰ। ਐ ਮੇਰੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ, ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਆਸਮਾਨ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਸੁਰਖਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਭਾਵ ਛੋਟਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਰੰਗ ਛੱਡਿਆ, ਵੱਡਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਰੰਗ ਛੱਡਿਆ, ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਵੀ ਰੰਗ ਛੱਡਿਆ, ਆਸਮਾਨ ਨੂੰ ਵੀ ਰੰਗ ਛੱਡਿਆ, ਮੂਰਖਾਂ ਤੇ ਵੀ ਰੰਗ ਚੜ ਗਿਆ, ਸਿਆਣਿਆਂ ਤੇ ਵੀ ਰੰਗ ਚੜ ਗਿਆ, ਨਿਰਬਲ ਕਮਜ਼ੋਰਾਂ ਤੇ ਵੀ ਰੰਗ ਚੜ ਗਿਆ, ਬਲਵਾਨਾਂ ਤੇ ਵੀ ਰੰਗ ਚੜ ਗਿਆ। ਐਸਾ ਤੁਸੀਂ ਗੁਲਾਲ ਛਿੜਕਿਆ, ਸਾਰੇ ਰੰਗੇ ਗਏ ਨੇ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਚਿੰਤਨ ਕਰਦਿਆਂ ਕਰਦਿਆਂ ਜਦ ਅੰਦਰ ਪਿਆਰ ਦੀ ਕਿਰਨ ਪਹਿਲੀ ਦਫ਼ਾ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਅੰਦਰ ਲਾਲ ਰੰਗ ਦੀ ਧਾਰੀ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਐਸਾ ਮਨੁੱਖ ਬਾਹਰੋਂ ਲਾਲ ਰੰਗ ਤੋਂ ਬਹੁਤਾ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਸ ਲਾਲ ਰੰਗ ਦਾ ਬੜਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹੈ, ਲਾਲ ਗੁਲਾਲ ਗਹਿਬਰਾ ਸੱਚਾ ਰੰਗ ਚੜਾ। ਲਾਲ ਰੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਸਫੈਦ ਰੰਗ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਰੱਤਾ ਪਹਿਨਣ ਮਨ ਰੱਤਾ ਸੁੱਪੇ ਦੀ ਸਤ ਦਾਨ। ਸਤ ਦਾਨ ਉੱਚਾ ਇਖਲਾਕ ਤੇ ਪਰਉਪਕਾਰੀ ਬਿਰਤੀ, ਸੁਲਾ ਕੁਨ ਬਿਰਤੀ। ਨਾਮ ਜਪਦਿਆਂ ਜਪਦਿਆਂ ਜਦ ਬੰਦੇ ਦਾ ਆਚਰਣ ਉੱਚਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਇਖਲਾਕ ਉੱਚਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਔਰ ਅੰਦਰ ਸੁਲਾ ਕੁਨ ਬਿਰਤੀਆਂ ਜਨਮ ਲੈਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਤਾਂ ਉਸ ਵਕਤ ਹਿਰਦੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਸ ਰੰਗ ਦੀ ਧਾਰੀ ਬਣਦੀ ਹੈ ਉਹ ਰੰਗ ਚਿੱਟਾ। ਸਿਮਰਨ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹੜੀ ਧਾਰੀ ਪਹਿਲੀ ਬਣੇਗੀ ਇਸਦਾ ਕੋਈ ਪਹਿਲੇ ਤੋਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਤਾਂ ਜਿਸ ਰੰਗ ਦੀ ਧਾਰੀ ਬਣਦੀ ਹੈ ਮਨੁੱਖ ਉਸੇ ਤੋਂ ਹੀ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦਾ। ਅਗਰ ਨਾਮ ਜਪਦਿਆਂ ਜਪਦਿਆਂ ਅਜੇ ਪਿਆਰ ਤੇ ਨਹੀਂ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਪਰ ਪਰਉਪਕਾਰੀਆਂ ਬਿਰਤੀਆਂ ਦਾ ਜਨਮ ਹੋ ਗਿਆ, ਇਖਲਾਕ ਉੱਚਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਦਾਨੀ ਸੁਭਾਅ ਹੋ ਗਿਆ, ਤਾਂ ਜਿਸ ਰੰਗ ਦੀ ਧਾਰੀ ਬਣੇਗੀ ਉਹ ਚਿੱਟਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਐਸਾ ਮਨੁੱਖ ਚਿੱਟੇ ਕੱਪੜਿਆਂ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਵੇਗਾ, ਐਸਾ ਮਨੁੱਖ ਤਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚਿੱਟੇ ਕੱਪੜੇ ਹੀ ਧਾਰਨ ਕਰੇਗਾ। ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦਾ ਇੱਕ ਸਾਧੂ ਸਮਾਜ ਦਾ ਟੋਲਾ ਜੇ ਚਿੱਟੇ ਕੱਪੜਿਆਂ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਉਹ ਐਵੇਂ ਨਹੀਂ, ਅੰਦਰ ਦੀ ਛਾਪ ਬਾਹਰ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਈ। ਰੱਤਾ ਪਹਿਨਣ ਮਨ ਰੱਤਾ ਸੁੱਪੇ ਦੀ ਸਤਦਾਨ, ਨੀਲੀ ਸਿਆਈ ਕਦਾ ਕਰਨੀ ਪਹਿਰਨ ਪੈਰ ਧਿਆਨ। ਨੀਲੀ ਸਿਆਈ ਦੋ ਰੰਗ, ਨੀਲਾ ਤੇ ਸਿਆਹ, ਨੀਲਾ ਰੰਗ ਤੇ ਕਾਲਾ ਰੰਗ। ਕਦਾ ਕਰਨੀ ਵਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਕੱਟ ਦੇਣਾ ਹੈ, ਦੁਬਦਾ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਮਾਰ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਮਾਰਨ ਵਾਸਤੇ ਵੀਰ ਰਸ ਚਾਹੀਦਾ ਤੇ ਮਾਰਨ ਵਾਸਤੇ ਰੋਸ ਵੀ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਹ ਗੱਲ ਵੱਖਰੀ ਹੈ ਬਾਹਰ ਜ਼ਾਲਮ ਨੂੰ ਮਾਰਨਾ ਹੈ ਜਾਂ ਅੰਦਰ ਕ੍ਰੋਧ ਨੂੰ ਮਾਰਨਾ, ਬਾਹਰ ਕਿਸੇ ਦੁਰਾਚਾਰੀ ਨੂੰ ਮਾਰਨਾ ਹੈ ਜਾਂ ਅੰਦਰ ਕਾਮ ਨੂੰ ਮਾਰਨਾ। ਮਾਰਨ ਵਾਸਤੇ ਰੋਸ ਤੇ ਜੋਸ਼ ਚਾਹੀਦਾ, ਜਿੱਥੇ ਰੋਸ ਹੀ ਨਹੀਂ ਉੱਥੇ ਜੋਸ਼ ਨਹੀਂ ਪੈਦਾ ਹੋਏਗਾ। ਰੋਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਬੂਲਦਾ, ਇਸ ਜ਼ੁਲਮ ਨੂੰ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਦਾ, ਇਸ ਅਨਰਥ ਨੂੰ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਬੂਲ ਕਰਦਾ, ਤਾਂ ਰੋਸ। ਜਿਸ ਵਕਤ ਰੋਸ ਪੈਦਾ ਹੋਵੇਗਾ ਅੰਦਰ ਜਿਸ ਰੰਗ ਦੀ ਧਾਰੀ ਬਣੇਗੀ ਉਹ ਕਾਲਾ ਰੰਗ ਹੋਵੇਗਾ। ਅੱਜ ਵੀ ਕਿਧਰੇ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇ, ਰੋਸ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇ, ਤਾਂ ਹੱਥ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲੋਕ ਕਾਲੇ ਬਿੱਲੇ ਬੰਨਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਕਾਲੇ ਰੰਗ ਦੇ ਕੱਪੜੇ ਪਹਿਨ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਕਾਲਾ ਰੰਗ ਸੋਗ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਨਹੀਂ, ਰੋਸ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ, ਰੋਸ। रोस प्रगट करना है। तो जिस वक्त अंदर काम होवे, क्रोध होवे, लोभ होवे, मोह ममता होवे, ते इन वेख के रोस अंदर पैदा होंदा होवे भी ये क्यों ने, इन्हां नू कढ़ना है, इन्हां नू मारना है, उस रोस भरी हालत दे च अंदर जो रंग बनेगा वो काला होवेगा। इस वास्ते जगत दे चंद फकीरां ते साधुआं ने बकायदा काला बाणा भी धारण किया। बाबा श्री चंद की चलाई संपर्दा उदासीन उदे च एक तबका काला लिबास पहनता सी और हुण भी पहनता। इस्लाम दे फकीर सूफी करीबन करीबन तमाम काले ही बस्तर पहनते सन, जिसका थोड़ा जिहा जिक्र बाबे फरीद की बाणी दे चों भी मिलता है। काले मैडे कपड़े काला मैडा वेश, गुन ही भरिया मैं फिरां लोग कहन दरवेश। मेरे काले कपड़िया नू वेख के लोकी दरवेश कहंदे ने, लोकी फकीर कहंदे ने, लोकी संत कहंदे ने। तो कुछ साधुआं दा गेरवा रंग दा बस्तर पहन लेना, या चिट्टे रंग दे बस्तर पहन लेना, या काले रंग दे बस्तरां नू धारण कर लेना, ए एवें नहीं सी, कोई पखंड नहीं सी, कोई दिखावा नहीं सी। अंदर दी धारी, अंदर दा रंग बार प्रगट होया, अंदर रोस नहीं ते बारों का काले कपड़े पहन लेने ने, ए पखंड। अंदर प्यार नहीं ते बारों भगवा लिबास पहन लेना, ए दोख है। और इसे तरीके नाल अंदर उच्चा इखलाक नहीं, दानी बिरती नहीं, परोपकार नहीं, ता चिट्टे बस्तर दिखा के अपना भेख प्रगट करना, ए भी दोख है, ए भी पखंड है। तो नीली स्याही कढ़ा करने, स्या रंग रोस दा है और नीला रंग जोश दा है, बीर रस। जब मनुख बीर रस विच भर जांदा है, रोस तो बाद जो जोश पैदा होया, बीर रस पैदा होया, वे हुण ते खत्म ही करना है। हुण जालम नू मिटा के रखना है, हुण अंदर दे काम नू खत्म करके रखना है, हुण क्रोध नू मिटा के रखना है। इस तरह दा जब बीर रस अंदर पैदा होंदा है, तो बीर रस दी हालत विच जिस रंग दी धारी अंदर बनदी है वो नीला है। गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज दी फौज दा बेशतर हिस्सा जे नीला रंग दा बाणा पहन के मैदाने जंग दे आया, तो एवें नहीं सी, सुभावक नहीं सी, बल्कि अंदर दी धारी बार प्रगट हुई सी। गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज दे सिंह अगर काला रंग पहन के आए, काले दस्तारे करके आए, तो एवें नहीं, कुछ रोस भरी हालत दे आए। वक्त दी हकूमत ते रोस है, गुनाहां ते रोस है, दुराचार ते रोस है, काम ते रोस है, क्रोध ते रोस है। ते जब रोस है तो फिर काला रंग अंदर उभरेगा, और जब इन्हां नू मिटाण दी भावना जोश पैदा होवेगा तो नीले रंग दा जन्म होवेगा। इस वास्ते नीला रंग भी साधुआं ने पहन लिया, खास करके उन्हां साधुआं ने जो अठे पैर वीर रस नाल भरे रहिंदे सन। काले जामे भी पहन लिया उन्हां साधुआं ने जिन्हां दे अंदर रोस प्रधान होंदा सी, जिन्हां दे अंदर प्यार प्रधान सी, उन्होंने भगवा वेश धारण कर लिया, जिन्हां दे अंदर सुलह कुन बिरथी। और इसे तरीके दे नाल दान ते परोपकार दा मादा बहुत उजागर होया, उन्होंने चिट्टे रंग नूं पहल दित्ती। नीला रंग जिथे जोशदा है उत्थे विशालता दा भी है। साहिब गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज दे कौड़े दा रंग नीला, ते अज भी जे UNO दा झंडा देखिए तां नीले रंग दा, यूनाइटेड नेशन दा। ते नीला रंग दरअसल संसार दा प्रतीक है, आसमान नीला है, ते ओदे थल्ले सारे दा सारा संसार है। यूनाइटेड नेशन ने ए जो नीला रंग चुनिया, इस तों भाव ए है कि असी सारे संसार दी नुमाइंदगी कर, असी सारे संसार बारे सोचना है और एक सार सोचना है। नीला रंग विशालता दा भी है, नीला रंग अपनी थां दे उते बहुत वड्डी महानता रखदा है। तो साहिब गुरु नानक देव जी महाराज दा फरमान, नीली स्याही कढ़ाई करनी पैरन पैर ध्यान, अंदर जो जोश पैदा हो गया है, विशालता पैदा हो गई है, ये असी नीला रंग पहने। और विकारां प्रति जो रोस पैदा हो गया है, ये असी काले रंग दी पोशाक पहनी है। और अंदर जो सुलह कुन बिरती पैदा हो गई है, अमन पैदा हो गया है, दान दी बिरती पैदा हो गई है, ये असी चिट्टे रंग दे बस्तर पहने ने। और नाम जपदियां जपदियां सुरत जो नाम विच लीन हो गई है, रती गई है, प्यार पैदा हो गया है, ये असी लाल रंग दी पोशाक पहनी। धार्मिक दुनिया विच एक होर रंग दी वी असी प्रधानता देखदे आ, वो है पीत रंग, पीला रंग। महात्मा बुद्ध दे वस्त्र पीले रंग दे ने, बोध भिक्षु तमाम दे तमाम पीले रंग दे वस्त्र पहनदे ने। द्वापर युग दे सिरमौर अवतार श्री कृष्ण नूं पीतांबर आख्या गया, पीले कपड़े पहनण वाला। गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज ने धार्मिक मंदिरां दा जो निशान झंडा चुनिया वह पीले रंग दा चुनिया। गुरुद्वारियां दे उत्ते जो निशान साहब झूलदा है वह केसरी है, वह पीले रंग दा। कृष्ण जी दे वस्त्रां दे नाल पीला रंग जुड़ गया। महात्मा बुद्ध नूं पीला रंग पसंद सी, बोध भिक्षु सारे दे सारे पीला रंग पहनदे ने। कहिंदे ने पीला रंग खेड़े दा, मस्ती दा, और पीला रंग मौत दा भी है। ज्यों ज्यों खून मनुख दे अंदर खत्म होंदा है त्यों त्यों चेहरा पीला पैंदा, और मरण दे नेड़े गया मनुख उसका चेहरा पीला हो ही जांदा, अखियां पीलियां हो जांदियां, जिसनू जीवन विच मौत दिखाई दे गई है, और जिसनू इस जीवन विच परम जीवन की झलक मिल गई है, उसके कोल कुछ खेड़ा होगा, कुछ मस्ती होगी, कुछ उसनू मौत अच्छे पैर दिखाई देगी। ऐसी हालत विच जो उसके अंदर रंग की धारी बनेगी वो रंग पीला होगा। इस पीले रंग का जिक्र भाई साहब भाई नंद लाल भी करते हैं। जहे पिचकारिये पुर जाफरानी के हर बेरंग रा खुश रंग बू कर। हे गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज, थोड़े हथ दे केसरी रंग की भरी हुई पिचकारी है जिदे नाल तुसी हर एक बंदे नू केसरी रंग विच रंग छड़े। तो गुरु घर विच केसरी रंग की भी अपनी प्रधानता है, और ये अंदर की पवित्रता, अंदर का खेड़ा, अंदर की मस्ती, और मौत का जड़ा बोध है ये उसका प्रतीक है, उसका प्रगटावा है। तो साहिब श्री गुरु नानक देव जी महाराज का फरमान, धौल धर्म दया का पुत्र। जो धर्म है ये दया का पुत्र है, और इसका रंग चिट्टा है, इसका रंग सफेद है। सफेद रंग की अपनी बहुत वड्डी महानता। धर्म का जन्म दया तो होया। दयालु जो मनुख ने जिसका हिरदा कोमल नहीं, उत्थे धर्म का पैदा होना अत्यंत कठिन है। जैसे कोमल जमीन के अंदर ही गुलाब के फुल पैदा होते ने, चंपा चमेली पैदा होते ने, शुभ गुण कोमल हिरदिया च पैदा होते। धरती नूं कोमल कमल करन वास्ते जैसे किसान पहले हल चलांदा है, सुहागा फेरदा है, पानी देंदा है, जमीन कोमल होवे, काबले काश्त हो सके, इस विच बूटे लाए जा सकन, इसे तरीके नाल गुरु का सिख सत्संग करदा है, बाणी पढ़दा है, सेवा करदा है, सतपुरुषां दी संगत विच बैठदा है, ताकि हिरदा कोमल हो सके, इस विच शुभ गुणा दे बूटे पैदा हो सकन, इस विच धर्म पैदा हो सके। साहिबां दी बाणी दा फैसला, अनक जतन करे आत्म नहीं दरवे, हर दरगे को कैसे गवे। अनेका कर्म करदे होया भी जिसका हिरदा कोमल नहीं होया, द्रव्या नहीं, ऐसा बंदा परमात्मा दे दर तक किस तरह पहुंचेगा। कोमल मनुख ही परमात्मा तक पहुंचते ने, कठोर नहीं पहुंचते। असी देखते हाँ कि गुरु चरणा विच लोकी फुल अर्पण करते हैं। अगर कोई तार्किक बंदा बारों पत्थर चुक के, गीटियां चुक के गुरु दे अगों रख दे रहे, तो सानू कहना पएगा ये बड़ा बेअदब है, गुस्ताख है। ते जे वो तर्क खड़ी कर दे, फुल अर्पण हो सकते ने, पत्थर क्यों नहीं अर्पण हो सकते। उनू समझाना पएगा फुल कोमल ने, सुंदर ने, सुगंधित ने, इस वास्ते अर्पण होंदे ने। पत्थर ठोस है, निर्गंध है, करूप है, इस वास्ते गुरु दे चरणा च भेट नहीं कीते जा सकते। जे पत्थरां वास्ते गुरु दे चरणा च कोई थां नहीं, तां पत्थर दिलां वास्ते भी कोई थां नहीं। पत्थर दिमाग जेड़े ने उन्हां वास्ते भी कोई थां नहीं। दिमाग कोमल करना पएगा, हिरदा कोमल करना पएगा, तां ही किधरे शुभ गुणा दा बूटा अंदर पैदा हो सकेगा। तो साहिब कहिंदे धर्म दा जन्म दया तो होंदा। धौल धर्म दया का पूत, दया विचों धर्म की उत्पत्ति है, और जे दया उसकी मां है तो फिर पिता कौन है। साहिबां दा फरमान, पिता संतोख है संतोख ताप रखिया जिन सूत दया तो सेवा का जन्म होंदा है और संतोख तो सिमरन का जन्म होंदा है। सिमरन करके मनुख निरंकार नाल जुड़दा है और सेवा करके मनुख संसार नाल जुड़दा है। ऐसा धड़ा जगत विच सी जिसने सेवा नू त्याग दिता, कोई लोड़ नहीं, संसार नाल जुड़न की कोई लोड़ नहीं, कठोर हो गए। इतने कठोर हो गए कि सिमरन करना भी औखा हो गया, बहुत औखा हो गया, क्योंकि कठोर हिरदिया प्रभु का वासा हो ही नहीं सकता। इस वास्ते साहिब श्री गुरु नानक देव जी महाराज ने दोवां नूं प्रधानता दिती, जैसे मात पिता बिन बाल न होई। भगत कबीर का कहना, कल्ली मां पुत्र नूं जन्म नहीं दे सकदी, कल्ला पिता पुत्र नूं जन्म नहीं दे सकदा। जैसे मात पिता बिन बाल न होई, इस तरह धर्म नूं जन्म देण वास्ते दया ते संतोख दोवें इकट्ठे चाहिए ने। संतोखी हिरदे चों सिमरन की धार निकलेगी और दयालु हिरदे चों सेवा की धार निकलेगी। सेवा करके संसार का भला होगा और सिमरन करके मनुख का अपना भला होगा। सेवा करके वह संसार नाल जुड़ेगा और सिमरन करके वह निरंकार नाल जुड़ेगा। इस वास्ते गुरु नानक ने संगत ते पंगत की मर्यादा तोरी, भई मनुख सेवा भी करता रहे सिमरन भी करता रहे, और जिथे सेवा सिमरन प्रधान रूप विच प्रगट हो जान, समझो उथे धर्म प्रगट हो गया, मानो ओ धर्मी मनुख।
1: ਕੇਰਬੂ ਦੀ ਰੰਗੀਲੀ ਧਰਤੀ ਦੇ ਵਸਨੀਕ ਸਰੋਤਿਓ, ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ FM ਰੇਡੀਓ CISK 94.3 ਤੋਂ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹੋ। ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਵੈਸਨ ਸਿੰਘ ਸਵਾ ਵਿਲੀਅਮ ਸਲੇਕ ਤੋਂ ਪ੍ਰਸਾਰਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਮੀਦ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵੀ ਖੋਜ ਭਰਪੂਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਸੁਝਾਅ ਦਿੰਦੇ ਰਹੋਗੇ। ਸਾਡੇ ਸਟੂਡੀਓ ਦੇ ਟੈਲੀਫੋਨ ਨੰਬਰ ਤਾਂ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ, ਜੇ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਲਿਖ ਲਓ ਜੀ। ਏਰੀਆ ਕੋਡ 250-392-3374 ਅਤੇ ਫੈਕਸ ਨੰਬਰ ਏਰੀਆ ਕੋਡ 250-392-3375।
2: ਸਾਡਾ ਈਮੇਲ ਐਡਰੈਸ ਨੋਟ ਕਰੋ ਜੀ, singhsabha2@gmail.com। ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਨੋਟ ਕਰੋ ਜੀ, singhsabha2@gmail.com।
3: You are listening Sikh Radio, broadcasting from Gurdwara Sahib, Western Singh Sabha, Williams Lake. Any comments and suggestions, please call 250-392-3874.

यो संसारा नित तीरथ नावे ना जाए अहंकारा बिन गुर पेटे जम करे खुआरा सो जन साचा जे हो मैं मारे गुर के शब्द पंच संगारे आप तरह सगले कुल तारे माया मोह नट बाजी पाई मनमुख अंध रहे लपताई गुरमुख अलिप्त रहे लिवलाई बहुते पेख करे पेख तारी अंतर तिसना फिरे अंकारी आप ना चीने बाजी हारी कापड़ पहर करे चतुराई माया मोह अत परम फुलाई बिन गुर सेवे बहुत दुख पाई नाम रते सदा बैरागी ग्रही अंतर साच लिव लागी नानक सतगुर सेवे सेवड़ पागी गौड़ी महला तीजा ब्रह्मा मूल वेद अव्यासा तिसते उपजे देव मोह प्यासा त्रैगुण परमे नाही निज करवासा हम हर राखे सतगुरु मिलाया अंदिन पगत हर नाम दृढ़ाया रहाओ त्रैगुण बाणी ब्रह्म जंजाला परवाद वखाणे सिर मारे जमकाला तत न कीने बन्ने पंड पराला मनमुख अज्ञान को मार्ग पाए हर नाम विसारिया बहु कर्म दृढ़ाए पवजल डूबे दूजे पाए माया का मोहताज पंडित कहावे बिखिया राता बहुत दुख पावे।

गुर कै शब्द अंतर सहज रीदे, मेरा प्रभ पाया गुर कै शब्द सीधे, सतगुर मेले प्रभ आप मिलाए, मेरे प्रभ साचे कै मन पाए, हर गुण गावे सह सुवाए, बिन गुर साचे परम पुनाए, मनुख अंधे सदा दुख खाए, जम दंड सह सदा दुख पाए, जमुआ ना जो है

सतगुर ते जो मोह फेरे ते वे मुख बुरे दिसन अंगिन बदे मारियन फिर वेला ना लहन हर हर राखो कृपा तार सत्संगत मेलाए प्रभ हर हृदय हर गुण सार रहाओ से भगत हर पाव दे जो गुरमुख पाए चलन आप छोड़ सेवा करन जीवत मोए रहन जिसदा पिंड प्राण है तिसकी सिरकार ओहो क्यों मनो विसारी है हर रखी है हृदय तार नाम मिले पत पाई है नाम मने सुख होए सतगुर के नाम पाई है कर्म मिले प्रभ सोए सतगुर के जो मोह फेरे ओ क्रम दे ना टिकन तर्क असमान ना चली विच विस्ता पै पचन इहो जग परम पुलाया मोट गौली पाए जिना सतगुर पेटिया तिन नेड़ ना पिटै माए सतगुर सेवन सो सोहणे हों।

मिलिए हर माए गुरपाल पूरे पाया गल मिलिया प्यारा आए मन करहला सतगुरु पुरख त्याए रहा मन करहला विचारिया हर राम नाम त्याए जिथे लेखा मंगिए हर आपे ले छड़ाए मन करहला अप निर्मला मन लागी हो मैं आए पर तक फिर कर नाल प्यारा विचड़ चोटा खाए मन करहला मेरे प्रीतमा हर हृदय पाल पालाए उपाय किते ना लबई गुर हृदय हर देखाए मन करहला मेरे प्रीतमा दिन रैन हर लिवलाए घर जाए पावे रंग महली गुर मेले हर मिलाए मन करहला तू मीत मेरा पखंड लोभ सजाए पखंड लोभी मारिए जम दंड दे सजाए मन करहला मेरे प्राण तू मैल पखंड परम गवाए हर अमृत सर गुर पूरिया मिल संगति मल ले जाए मन करहला मेरे प्यारिया एक गुर की सिख सुनाए ए मोह माया पसरिया अंत साथ ना कोई जाए मन करहला मेरे साजना हर खर्च लिया पत पाए हर दरगे पहनाया हर आप लिया गल लाए मन करहला गुर मन्या गुरमुखकार कमाए गुर आगे कर जोदड़ी जन नानक हर मेलाए गौड़ी महला चौथा मन करहला विचारिया विचार देख समाल बन फिर थके बनवासिया फिर गुरमत हृदय निहाल मन करहला गुर गोविंद समाल रहाओ मन करहला विचारिया मन मुख पातिया महाजाल गुरमुख प्राणी मुक्त है हर हर नाम समाल मन करहला मेरे प्यारिया सतसंगत सतगुर पाल सतसंगत लग हर त्याई है हर हर चले तेरे नाल मन करहला वड पाजिया हर एक नजर निहाल आप छाए छुट्टी है सतगुर चरण समाल मन करहला मेरे प्यारिया विच देही जोत समाल गुरु नौ निज नाम विखालिया हर दास करी दयाल मन करहला तू चंचला चतराई छड विकराल हर हर नाम समाल तू हर मुक्त करे अंतकाल मन करहला बड पागिया तू ज्ञान रतन समाल गुर ज्ञान खड़ घट तारिया जम मारिया राजम काल अंतर निधान मन करहले प्रम पवे बार पाल गुरपुरख पूरा पेटिया हर सज्जन लगड़ा नाल रंग रतड़े मन करहले हर रंग सदा समाल हर रंग कदे ना उतरे गुर सेवा शब्द समाल हम पंखी मन करहले हर तरवर पुरख अकाल वड पागी गुरमुख पाया जन नानक नाम समाल रागौड़ी ग्वारेरी मेला पंजवा अष्टपदियां।

जब हो मन में करत गुमाना, तब हो बावर फिरत बिगाना, जब एहो हुआ सगल की रीना, ताते रमैया कट कट चीना, सहज सुहेला फल मस्कीनी, सतगुर अपने

जब इन करने हार पछाता तब इतनो नाही किस ताता। जब इन अपनो बांधियो मोहा आवे जाए सदा जम जोहा। जब इससे सब दिन से परमा पेद नाही है पार ब्रह्मा। जब इन किस कर माने पेदा तब ते दुख दंड अर्खेदा। जब इन एको एक ही बूझिया तब ते इसनो सब कुछ सूझिया। जब एहो तावे माया अर्थी न तृप्तावे न किसलाती। जब इससे एहो होयो जौला पीछे लाग चली उठकौला। कर कृपा जो सतगुर मिलियो मन मंदिर में दीपक जलियो। जीत हार की सोजी करी तो इस पर की कीमत परी। करन करावन सब किस एक है आपे बुद्ध विचार विवेक है। दूर ना नेरे सबके संगा सच साला नान खर रंगा। गौड़ी महला पंजवा गुर सेवा से नामे लागा। जिसको मिलिया जिस मस्तक पागा तिसके हृदय रविया सोए मन तन।

तावत मनुआ आवे खाए, जास जपत फिर दुख ना लागे, जास जपत ए हो मैं पागे, जास जपत वस आवे पंचा, जास जपत हृदय अमृत संचा, जास जपत ए तृष्णा बुझे, जास जपत हर दरगे सिजे, जास जपत कोट मिटे अपराध, जास जपत हर होवे साध, जास जपत मन शीतल होवे, जास जपत मल सगली खोवे, जास जपत रसन हर मिले, बहुर ना छोड़े हर संग हिले, जास जपत कई बैरहंत वास, जास जपत सुख सह निवास, जास जपत ए अगर न पोहत, जास जपत एहो काल न जोहत, जास जपत तेरा निर्मल माथा, जास जपत सगला दुख लाता, जास जपत मुश्कल कछु न बने, जास जपत सुन अनहत तुने, जास जपत ए निर्मल सोए, जास जपत कमल सीधा होए, गुर शुभ दृष्ट सब ऊपर करी, जिसके हृदय मंत्र दे हरी, अखंड कीर्तन तिन भोजन चूरा, कहो नानक जिस सतगुरु पूरा, गौड़ी महला पंजवा, गुर का शब्द हृद अंतर पार है, पंच जना क्यों संग निवार है, दस इंद्री कर राखे वास, ताके आत्मे होए प्रगास, ऐसी दृढ़ता ताके होए, जा को दया मया प्रभ सोए, रहाओ साजन दुष्ट जाके एक समान है, जेता बोलन तेता ज्ञान है, जेता सुनना तेता नाम, जेता पेखन तेता ध्यान, सहजे जागन सहजे सोए, सहजे होता जाए सोहोए, सहज बैराग सहजे ही हसना, सहजे चूप सहजे ही जपना, सहजे भोजन सहजे पाओ, सहजे मिट्यो सगल दुराओ, सहजे हुआ साधु संग, सहज मिलियो पार ब्रह्म।

कहो नानक जिस कृपा करे नेचर थान साध संग तरे गौड़ी महला पंजवा जो इस मारे सोई सूरा जो इस मारे सोई पूरा जो इस मारे तिसे वड्याई जो इस मारे तिसका दुख जाए ऐसा कोई जे दुबदा मार जवावे इसे मार राज जोग कमावे रहाओ जो इस मारे तिसको पौना है जो इस मारे सो नाम समाहे जो इस मारे तिसकी तृष्णा बुझे जो इस मारे सो दरगे सिजे जो इस मारे सो तनवंता जो इस मारे सो पतवंता जो इस मारे सोई जति जो इस मारे तिस होवे गति जो इस मारे तिसका आया गनी जो इस मारे सो नहीं चलतनी जो इस मारे सो वड़ पागा जो इस मारे सो अंधिन जागा जो इस मारे सो जीवन मुक्ता जो इस मारे तिसकी निर्मल जुगता।

पंजवा हर स्यों जुरे ता सब को मीत हर स्यों जुरे ता नहीं चल चीत हर स्यों जुरे ना व्यापे काड़ा हर स्यों जुरे ता होए निस्तारा रे मन मेरे तू हर स्यों जोर काज तुहारे नाही होर रहाओ वडे वडे जो दुनियादार काहू काज नाही गावार हर का दास नीच कुल सुने तिसके संग खिन में उदरें

मन मेरे का टाकी काल, ना को चतुर ना ही को मूरा, ना को हीन ना ही को सूरा, जित को लाया तित ही लागा, तो सेवक नानक जिस पागा, गौड़ी महला पंजवा, बिन सिमरन जैसे सर्प आ जारी, त्यों जीवे साकत नाम बिसारी, एक निमक जो सिमरन मैं जिया, कोट दिन सलाख सदा तिरथिया, रहाओ बिन सिमरन त्रिग

बोले पूर साकत मुखकारा बिन सिमरन गर्गव की न्याई साकत खान परिष्ट फिराई बिन सिमरन कूकर हर काया साकत लोभी बंद न पाया बिन सिमरन है आत्म काती साकत नीचे तिस पुल नहीं जाती जिस पया कृपाल तिस सत्संग मिलाया कहो नानक गुर जगत कराया गौड़ी मैला पंजवा गुर के बचन मोह परम गत पाई गुर पूरे मेरी पैज रखाई गुर के बचन से आयो मोह नाओ गुर प्रसाद मोह मिले आताओ रहाओ गुर के बचन सुन रसन वखानी गुर कृपा से अमृत मेरी बाणी गुर के बचन मिटिया मेरा आप गुर की दया से मेरा वड प्रताप गुर के बचन मिटिया मेरा परम गुर के बचन पेख्यो सब ब्रह्म गुर के बचन कीनो राज जोग गुर के संग तरिया सब लोग गुर के बचन मेरे कार्य सिद्ध गुर के बचन पाया नाव निद जिन जिन कीनी मेरे गुर की आशा जिसकी कटिया जम की पासा गुर के बचन जा

जन्म जन्म की हूँ मैं मल्हरों, किस गुर को चुलाऊं पाखा, माँ अगन से हाथ दे राखा, किस गुर के गृह पानी, जिस गुर से अकल गत जानी, किस गुर के गृह तीसों नीत, जिस पर

सदा सदा तिस गुरु को करी नमस्कार। कल कलेश तै परम दुख लाता, कहो नानक मेरा गुर समराता। गौड़ी मैला पंजवा, मिल मेरे गोविंद अपना नाम देहो। नाम बिना त्रिग त्रिग असनेहो, रहाओ नाम बिना जो पहरे खाए, जो कुकर जूठन में पाए। नाम बिना जेता व्योहार, जो मिल

विचार नाम विचार करे रसोग सुख सुपने नहीं तन में रोग नाम त्याग करे अनकाज बिन जाए चूके सब पाज नाम संग मन प्रीत न लावे कोट कर्म कर तो नरक जावे हर का नाम जिन मन ना आराधा चोर की न्याई जमपुर बादा लाख अडंबर बहुत विस्तारा नाम बिना चूठे पासारा हर का नाम सोई जन ले कर कृपा नानक जिस दे गौड़ी मैला पंजवा आद मध्य जो अंत निवा है सो साजन मेरा मन चाहे हर की प्रीत सदा संग चाले दयाल पुरख पूरन प्रतपाल है राव बिन सत नाही छोड़ न जाए जह पेखा तह रहा समाए सुंदर सुगड़ चतुर जी दाता पाई पूत पिता प्रभ माता जीवन प्राण आधार मेरी रास प्रीत लाई कर हृदय निवास माया सिरख काटी गोपाल कर अपना लीनो नगर निहाल सिमर सिमर काटे सब रोग चरण ध्यान सर्व सुख भोग पूरन पुरख नवतन नित बाला हर अंतर बार संग रखवाला कहो नानक हर हर पद चीन सर्व सुनाम भगत कौ दीन रागौड़ी माध मैला पंजवा ओंकार सतगुरु प्रसाद खोजत फिरे असंख अंत न पारिया सेई होए भगत जिना कृपारिया हों वारिया हर वारिया रहाओ सुन सुन पंथ डराओ बहुत पहारिया मैं तकी ओर संता ले हो उबारिया मोहन लाल अनूप सर्व साधारिया गुर निव निव लागो पाए देहो दिखारिया मैं किए मित्र अनेक इकस बलिहारिया सब गुण किसी नाहे हर पूर पंडारिया चहु दिस जपिए नाव सूख सवारिया मैं आही और तुहार नानक बलिहारिया गुर काड्यो पूजा प्रसार मोह कुपारिया मैं जीत्यो जन्म अपार बहुर नहारिया मैं पायो सर्व निदान अकत कतारिया हर दरगे शोभावंत बाल उदारिया जन नानक लद्दा रतन अमोल अपार।

नारायण हर रंग रंगो, जप जेवा हर एक मंगो, राव तज हो मैं गुर ज्ञान तजो, मिल संगत तुर कर्म लिखियो, जो दी सह सो संग न गयो, साकत मूड लगे पच मोयो, मोहन नाम सदा रव रहयो, कोट मदे किने गुरमुख लयो, हर संतन कर नमो नमो, नौ निद पावे अतुल सुखो, नैन अलोवो साध जनो, हृदय गावो नाम निदो, काम क्रोध लोभ मोह तजो, जन्म मरण दो ते रहयो, दुख अंधेरा करते मिट्यो, गुर ज्ञान दृढ़ायो दीप बलियो, जिन सेविया सो पार करयो, जन नानक गुरमुख जगत करयो। महला पंजवा गौड़ी, हर हर गुर गुर करत परम गए, मेरे मन सब सुख पायो, रहाओ बल तो जल तो तौ क्या, गुर चंदन सीत लायो, अज्ञान अंधेरा मिट गया, गुर ज्ञान दी पायो, पावक सागर गहरो, चर संतन नाम करायो, ना हम कर्म ना कर्म सुच, प्रभ गह पूजा अतायो, पौ खंडन दुख पंजनो, भगत वचल हर नायो, अनाथ नाथ कृपाल दीन, समरथ संत ओटायो, निर्गुणी आरे की बेनती, देहो दर्श हर आयो, नानक शरण तुहारी ठाकुर, सेवक द्वारे आयो। गौड़ी महला पंजवा, रंग संग बिखिया के पोगा, इन संग अंध न जानी, हौ संचो हौ खाटता सगली अवध बिहानी, रहाओ हौ सूरा प्रधान हौ, को नाही मुझे समानी, जो बनवंत अचार कुलीना, मन में होए गुमानी, ज्यो उलझायो बाद बुद्ध का, मर्त्या नहीं बिसरानी, पाई मीत बंदव सके, पाछे तिन्हू को संपानी, जित लागो मन बासना, अंत साई प्रगटानी, आंग बुद्ध सुच कर्म कर, ए बंधन बंदानी, दयाल पुर

कर साजने आया। मिलवर नारी मंगल गाया, गुण गाए मंगल प्रेम रहती। मुंड मन उमा हो साजन रहन से दुष्ट व्यापे, साथ जप सचला हो कर जोर सातन करे बिनती। रैन दिन रस किनिया, नानक कीर्तन करे रलिया। इच्छ मेरी पुनिया, कौड़ी छंक मैला पैला। सुनना प्रभु जियो एक लड़ी बनवाहे, क्यों ती रहगी ना बिना प्रभु परवाहे। तन ना बाजो रह न पाखे,

कबदे सुहावे ता पत पावे दीपक देह उजारे सुन सकी सहेली साच सहेली साचे के गुण सारे सतगुर मेली ता फिरडावी बिगसी अमृत बाणी नानक सातन ता फिर रावे जा तिसके मन पानी माया मोणी नी करिया जियो कूड़ मुठी कूड़ियारे क्यों फूले गल जेवड़िया जियो बिन गुर अत प्यारे हर प्रीत प्यारे शब्द विचारे तिथि का सो होवे पुन दान अनेक नावन क्यों अंतर मल तोवे नाम बिना गत कोई न पावे हाथ निग्रह बे बाणे नानक सच कर।

तेरा मैल सच्चा जियो, नाम सच्चा वापारो, नाम का वापार मीठा, भगत लाहा अंदिनो, किस बाज वखर कोई न सूजे, नाम लेवो खिन खिनो, परख लेखा नदर साकी, कर्म पूरे पाया, नानक नाम।

हाथन बिनो करे जियो हर के गुण सारे किन पल रह न सके जियो बिन हर प्यारे बिन हर प्यारे रह न सके गुर बिन महल न पाई है जो गुर कहे सोई पर की जय कृष्णा अग्न बुझाई है हर साचा सोई तिस बिन अवर न कोई बिन सेवे सुख न पाए नानक सा तन मिले मिलाई जिसनो आप मिलाए तन रैन सुहेलड़िए जियो हर स्यो चित लाए सतगुर सेवे पाओ करे जियो विचों आप गवाए विचों आप गवाए हर गुण गाए अंदिन लागा पाओ सुन सखी सहेली जी की मेली गुर कै शब्द समाओ हर गुण सारी ताकंत प्यारी नामे तरी प्यारो नानक कामन ना।

गुर शब्द करारे, बिन शब्द प्यारे कौन दुत्तर पारे। माया मोह खुआई कूर विभूति तापिर मुत्ती, सापन महल न पाई। गुर शब्दे राती सहजे माती, अंदिन रह समाए नानक कामन सदा रंग राती। हर जियो आप मिलाए ता मिली है हर मेले जियो, हर दिन कौन मिलाए। बिन गुर प्रीतम अपने जियो, कौन परम चुकाए। गुर परम चुकाए यो मिलिए माए, पासा तन सुख पाए। गुर सेवा बिन कोर अंधार, बिन गुर मग न पाए। कामन रंग राती सहजे माती, गुर कै शब्द विचारे। नानक कामन हर वर पाया, गुर कै पाए प्यारे। गौड़ी महला तीजा, फिर बिन खरी निमाणी जियो। बिन फिर क्यों जीवा मेरी माई, फिर बिन नींद ना आवे जियो। कापर तन ना सुहाई, कापर तन सुहावे जा फिर पावे। गुरमती चित लाइए, सदा सुहागन जा सतगुर सेवे। गुर के अंक समाये, गुर शब्द मेला ता फिर रावी। लाहा नाम संसारे, नानक कामन ना प्यारी। जा हर के गुण सारे, सापन रंग माने जियो। अपने नाल प्यारे तैनस रंग राती जियो, गुर शब्द विचारे। गुर शब्द विचारे हों मैं मारे, इन बिद मिलो प्यारे। सापन सुहागन सदा रंग राती, साचे नाम प्यारे। अपने गुर मिल रही है अमृत गई है, दुबदा मार निवारे। नानक कामन हर वर पाया, सगले दुख विसारे। कामन फिर हो पुली।

गुर शब्द सेवे सच समावे, विचों हो मैं मारे हर का नाम हृदय वसाए, ऐसा करे सिगारो नानक का मन सह।

पावे अन्न ना पानी, पानी अन्न ना पावे मरिए हावे। बिन फिर क्यों सुख पाये, गुर आगे करो बिनंती जे गुर पावे। ज्यो मिले तिवे मिलाये, आपे मेल ले सुखदाता। आप मिलिया करे आए, नानक का मन सदा सुहागन। ना फिर मरे न जाए गौड़ी महला तीजा। कामन हर रस दे दीजियो, हर कै सह सुवाए। मन मोहन मोह लिया जियो, दुबदा सह समाए। दुबदा सह समाए कामन वर पाए, गुरुमती रंग लाए। तेहो शरीर पूर्ण कुसत परिया, गल काई पाप कमाए। गुरुमुख भगत जित सहज पुन उपजे, बिन भगती मैल न जाए। नानक कामन पिरे प्यारी, विचों आप गवाए। कामन फिर पाया जियो, गुर के पाए प्यारे। रैन सुख सुती जियो, अंतर उधारे। अंतर उधारे मिलिए प्यारे, अंदिन दुख निवारे। अंतर महल फिर रावे कामन, गुरमती विचारे। अमृत नाम पिया दिन राती, दुबदा मार निवारे। नानक सच मिली सुहागन, गुर कै हेत अपारे। आवो दया करे जियो, प्रीत मत प्यारे। कामन बिनो करे जियो, सच सबद सिगारे। सच सबद सिगारे हों मैं मारे, गुरमुख कारे सवारे। जुग जुग एको सच्चा सोई, बूझे गुर विचारे। मनमुख काम व्यापी, मोह संतापी। किस आगे जाए पुकारे, नानक मन मुख थाउ न पाए। बिन गुर अत प्यारे, मुंद इयानी पोली निगुनिया जियो। फिर अगम अपारा, आपे मेल मिलिए जियो। आपे बख्शनहारा, अवगुण बख्शनहारा। कामन कंत प्यारा, कट कट रहा समाई। प्रेम प्रीत पाए भगती पाई है, सतगुरु बूझ बुझाई। सदा आनंद रहे दिन राती, अंदिन रहे लिवलाई। नानक सहजे हर वर पाया, सातन नौनिद पाई। गौड़ी महला तीजा, माया सर सबल वरते जियो। क्यों कर दुत्तर करया जाए, राम नाम कर बोसा जियो। सबद खेवट विच पाए, सबद खेवट विच पाए। हर आप लंगाए, इन विद दुत्तर तरिए। गुरुमुख भगत परा

नानक राम नाम निस्तारा कंचन पए मनूरा। स्त्री पुरुष काम व्यापे जियो राम नाम की विद नहीं जानी। मात पिता सुत पाए खरे प्यारे जियो डूब मोए बिन पानी। डूब मोए बिन पानी गत नहीं जानी हो मैं ताप संसारे। जो आया सो सबको जाती उबरे गुर विचारे। गुरमुख होवे राम नाम वखाने आस करे पुल तारे। नानक नाम वसे कट अंतर गुरमत मिले प्यारे। राम नाम बिन को छिर नाही जियो बाजी है संसारा। दृढ़ भगत सच्ची जियो राम नाम वा पारा। राम नाम वा पारा अगमा पारा गुरमति कन पाई है। सेवा सुरत भगत के साची विच्चों आप दुआई है। हम मत हीन मूरख मुगद अंधे सतगुरु मार्ग पाए। नानक गुरमुख शब्द सुहावे अंदिन हर गुण गाए। आप कराए करे आप जियो आपे शब्द सवारे। आपे सतगुरु आप शब्द जियो जुग जुग भगत प्यारे। जुग जुग भगत प्यारे हर आप सवारे आपे भक्ति लाए। आपे दाना आपे बीना आपे सेव कराए। आपे गुण दाता अवगुण काटे हृदय नाम वसाए। नानक सद बलिहारी।

ਜਿਨੀ ਨਾਮ ਤੇ ਆਇਆ ਗਏ ਮਸ਼ਕਤ ਕਾਲ ਨਾਨਕ ਤੇ ਮੁਖ ਉਜਲੇ ਖੇਤੀ ਛੁੱਟੀ ਨਾਲ ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀਓ ਜਾਪ ਸਾਹਿਬ ਏਕ ਓਅੰਕਾਰ ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਜਾਪ ਸ੍ਰੀ ਮੁਖ ਵਾਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਦਸਵੀਂ ਸਪੈ ਸ਼ੰਤ ਦਾ ਪ੍ਰਸਾਦ ਚੱਕਰ ਚਿਹ ਨਰ ਵਰਨ ਜਾ ਚਿਰ ਪਾਤ ਨਹਿਨ ਜਿਹੇ ਰੂਪ ਰੰਗ ਅਰ ਲੇਖ ਬੇਖ ਕੂ ਕਹਿ ਨਾ ਸਕਦ ਕਹੇ ਅਚਲ ਮੂਲ ਧਨ ਪਉ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਮਿਤੋ ਜਿਹੇ ਜੈ ਕੋਟ ਇੰਦਰ ਇੰਦਰਾਣ ਸਾ ਸ਼ਾਨ ਗਣ ਜੈ ਕ੍ਰਿਪਵਣ ਮਹੀਪ ਸੁਰ ਨਾਰਿਆ ਸੁਰ ਨੇਤ ਨੇਤ ਵਣ ਤ੍ਰਿਣ ਕਹਿ ਤੂ ਤਬ ਸਰਵਨਾਮ ਕਥੈ ਕਵਣ ਕਰਮ ਨਾਮ ਵਰਣਤ ਸੁਮਤ ਭੁਜੰਗ ਪ੍ਰਯਾਤ ਛੰਦ ਨਮਸਤੰਗ ਅਕਾਲੇ ਨਮਸਤੰਗ ਕਿਰਪਾਲੇ ਨਮਸਤੰਗ ਰੂਪੇ ਨਮਸਤੰਗ ਅਨੂਪੇ ਨਮਸਤੰਗ ਪੇਖੇ ਨਮਸਤੰਗ ਲੇਖੇ ਨਮਸਤੰਗ ਅਕਾਏ ਨਮਸਤੰਗ ਅਜਾਏ ਨਮਸਤੰਗ ਗੰਜੇ ਨਮਸਤੰਗ ਪੰਜੇ ਨਮਸਤੰਗ ਨਾਮੇ ਨਮਸਤੰਗ ਠਾਮੇ ਨਮਸਤੰਗ ਕਰਮੰਗ ਨਮਸਤੰਗ ਧਰਮੰਗ ਨਮਸਤੰਗ ਨਾਮੰਗ ਨਮਸਤੰਗ ਧਾਮੰਗ ਨਮਸਤੰਗ ਜੀਤੇ ਨਮਸਤੰਗ ਪੀਤੇ ਨਮਸਤੰਗ ਗਾਹੇ ਨਮਸਤੰਗ ਵਾਹੇ ਨਮਸਤੰਗ ਤ੍ਰਿਵਰਗੇ ਨਮਸਤੰਗ ਸਰਗੇ ਨਮਸਤੰਗ ਪ੍ਰਭੋਗੇ ਨਮਸਤੰਗ ਸੁਜੋਗੇ ਨਮਸਤੰਗ ਰੰਗੇ ਨਮਸਤੰਗ ਅਪੰਗੇ ਨਮਸਤੰਗ ਗਮੇ ਨਮਸਤਾਸਰਮੇ ਨਮਸਤੰਗ ਜਲਾਸਰੇ ਨਮਸਤੰਗ ਨਿਰਾਸਰੇ ਨਮਸਤੰਗ ਜਾਤੇ ਨਮਸਤੰਗ ਪਾਤੇ ਨਮਸਤੰਗ ਮਜਬੇ ਨਮਸਤਾਸਰ ਜਬੇ ਅਦੇਸੰਗ ਅਦੇਸੇ ਨਮਸਤੰਗ ਅਪੇਸੇ ਨਮਸਤੰਗ ਨਿਰਤਾਮੇ ਨਮਸਤੰਗ ਨਿਰਵਾਮੇ ਨਮੋ ਸਰਬ ਕਾਲੇ ਨਮੋ ਸਰਬ ਦਿਆਲੇ ਨਮੋ ਸਰਬ ਰੂਪੇ ਨਮੋ ਸਰਬ ਭੂਪੇ ਨਮੋ ਸਰਬ ਖਾਪੇ ਨਮੋ ਸਰਬ ਥਾਪੇ ਨਮੋ ਸਰਬ ਕਾਲੇ ਨਮੋ ਸਰਬ ਪਾਲੇ ਨਮਸਤਸਤ ਦੇਵੈ ਨਮਸਤੰਗ ਪੇਵੈ ਨਮਸਤੰਗ ਜਨਮੇ ਨਮਸਤੰਗ ਸੁਬਨਮੇ ਨਮੋ ਸਰਬ ਗੌਣੇ ਨਮੋ ਸਰਬ ਭਾਵਣੇ ਨਮੋ ਸਰਬ ਰੰਗੇ ਨਮੋ ਸਰਬ ਭੰਗੇ ਨਮੋ ਕਾਲ ਕਾਲੇ ਨਮਸਤਾਸ ਦਿਆਲੇ ਨਮਸਤੰਗ ਵਰਣੇ ਨਮਸਤੰਗ ਮਰਣੇ ਨਮਸਤੰਗ ਜਰਾਰੰਗ ਨਮਸਤੰਗ ਕਿਰਦਾਰੰਗ ਨਮੋ ਸਰਬ ਤੰਦੇ ਨਮੋ ਅਸਤ ਬੰਦੇ ਨਮਸਤੰਗ ਨਿਰਸਾਕੇ ਨਮਸਤੰਗ ਨਿਰਵਾਕੇ ਨਮਸਤੰਗ ਰਹੀਮੇ ਨਮਸਤੰਗ ਕਰੀਮੇ ਨਮਸਤੰਗ ਅਨੰਤੇ ਨਮਸਤੰਗ ਮਹੰਤੇ ਨਮਸਤਾਸ ਰਾਗੇ ਨਮਸਤੰਗ ਸੁਹਾਗੇ ਨਮੋ ਸਰਬ ਸੁਖੰਗ ਨਮੋ ਸਰਬ ਭੋਗੰਗ ਨਮੋ ਸਰਬ ਕਰਤਾ ਨਮੋ ਸਰਬ ਹਰਤਾ ਨਮੋ ਜੋਗ ਜੋਗੇ ਨਮੋ ਭੋਗ ਭੋਗੇ ਨਮੋ ਸਰਬ ਦਿਆਲੇ ਨਮੋ ਸਰਬ ਪਾਲੇ ਚਾਚਰੀ ਛੰਦ ਦਉ ਪ੍ਰਸਾਦ ਅਰੂਪ ਹੈ ਅਨੂਪ ਹੈ ਜੂਹਾਂ ਪੂਹਾਂ ਲੇਖਾਂ ਪੇਖਾਂ ਰਾਮ ਹੈ ਕਾਮ ਹੈ ਅਦਿਆ ਪਿਆ ਜੀਤਾਂ ਪੀਤਾ ਤਰਮਾਨ ਨਿਦਾਨ ਤਰਵਰਗ ਸਰਗ ਹੈ ਅਨੀਲਾ ਨਾਦ ਹੈ ਜੇ ਆਜ਼ਾਦ ਹੈ ਅਜਨਮ ਹੈ ਵਰਣ ਭੂਤ ਵਰਣ ਹੈ ਅਗੰਜ ਪਾਂਜਾ ਦੂਜਾ ਜੰਜ ਹੈ ਅਮੀ ਕਰ ਵੀ ਕੰਧ ਬੰਦ ਹੈ ਨਿਰਭੂਜ ਸੂਜ ਕਾਲ ਜਾਲ ਹੈ ਅੱਲਾਹ ਜੈ ਅਨੰਤ ਮਹੰਤ ਹੈ ਅਲੀ ਕੈਂਦਰ ਸ੍ਰੀ ਕੈਂਦਰ ਲੰਬ ਸੰਭ ਹੈ ਗਮ ਹੈ ਜਮ ਭੂਤ ਹੈ ਸੂਤ ਹੈ ਅਲੋਕ ਹੈ ਸੋਕ ਹੈ ਕਰਮ ਹੈ ਪਰਮ ਹੈ ਅਜੀਤ ਹੈ ਪੀਤ ਹੈ ਬਹਾਇ ਗਾਇ ਮਾਨ ਅਨਦਾਨ ਨੀ ਗਫਰੀ ਕਹੇ ਭੁਜੰਗ ਪ੍ਰਯਾਤ ਛੰਗ ਨਮੋ ਸਰਵਮਾਨੇ ਸਮਾਤੀ ਨਦਾਨੇ ਨਮੋ ਦੇਵ ਦੇਵੇ ਅਪੇਖੀ ਅਪੇਵੇ ਨਮੋ ਕਲ ਕਾਲੇ ਨਮੋ ਸਰਵ ਪਾਲੇ ਨਮੋ ਸਰਵ ਗਾਉਣੇ ਨਮੋ ਸਰਵ ਪਾਉਣੇ ਅਨੰਗੀ ਅਨਾਥੀ ਨਿਰਸੰਗੀ ਪਰਮਾਥੇ ਨਮੋ ਪਨ ਪਾਨੇ ਨਮੋ ਮਨ ਮਾਨੇ ਨਮੋ ਚੰਦਰ ਚੰਦਰੇ ਨਮੋ ਪਨ ਪਾਨੇ ਨਮੋ ਗੀਤ ਗੀਤੇ ਨਮੋ ਤਾਨ ਤਾਨੇ ਨਮੋ ਨ੍ਰਿਤ ਨ੍ਰਿਤੇ ਨਮੋ ਨਦ ਨਾਦੇ ਨਮੋ ਪਨ ਪਾਨੇ ਨਮੋ ਬਾਦ ਬਾਦੇ ਅਨੰਗੀ ਅਨਾਮੇ ਸਮਾਧਿ ਸਰੂਪੇ ਪ੍ਰਭੰਗੀ ਪਰਮਾਥੇ ਸਮਾਧਿ ਬਭੂਤੇ ਕਲੰਕੰ ਬਿਨਾ ਨੇ ਕਲੰਕੀ ਸਰੂਪੇ ਨਮੋ ਰਾਜ ਰਾਜੇ ਸ਼ਿਵਰੰਗ ਪਰਮ ਰੂਪੇ ਨਮੋ ਯੋਗ ਯੋਗੇ ਸ਼ਿਵਰੰਗ ਪਰਮ ਸਿਧੇ ਨਮੋ ਰਾਜ ਰਾਜੇ ਸ਼ਿਵਰੰਗ ਪਰਮ ਬਿਰਦੇ ਨਮੋ ਸਸਤ੍ਰ ਪਾਣੇ ਨਮੋ ਅਸਤ੍ਰ ਮਾਣੇ ਨਮੋ ਪਰਮ ਗਿਆਤਾ ਨਮੋ ਲੋਕ ਮਾਤਾ ਪੇਖੀ ਪਰਮੀ ਭੋਗੀ ਭੁਗਤੇ ਨਮੋ ਯੋਗ ਯੋਗੇ ਸ਼ਿਵਰੰਗ ਪਰਮ ਜੁਗਤੇ ਨਮੋ ਨਿਤ ਨਾਰਾਇਣੇ ਗਰੂਰ ਕਰਮੇ ਨਮੋ ਪ੍ਰੇਤ ਪ੍ਰੇਤ ਦੇਵੇ ਸੁਧਰਮੇ ਨਮੋ ਰੋਗ ਹਰਤਾ ਨਮੋ ਰਾਗ ਰੂਪੇ ਨਮੋ ਸ਼ਾਸ਼ਾਂਗ ਨਮੋ ਭੂਪ ਭੂਪੇ ਨਮੋ ਦਾਨ ਦਾਨੇ ਨਮੋ ਮਨ ਮਾਨੇ ਨਮੋ ਰੋਗ ਰੋਗੇ ਨਮਸਤੰਗ ਸ਼ਨਾਨੇ ਨਮੋ ਮੰਤਰ ਮੰਤਰੰਗ ਨਮੋ ਯੰਤਰ ਯੰਤਰੰਗ ਨਮੋ ਇਸ਼ਟੇ ਇਸ਼ਟੇ ਨਮੋ ਤੰਤਰ ਤੰਤਰੰਗ ਸਦਾ ਸਚਦਾਨੰਦ ਸਤ ਸਰਵੰਗ ਪ੍ਰਣਾਸੀ ਅਨੂਪੇ ਰੂਪੇ ਸਮਾਤਲ ਨਿਵਾਸੀ ਸਦਾ ਸਿੱਧ ਦਾ ਬੁੱਧ ਦਾ ਬਿਰਧ ਕਰਤਾ ਅਦੋ ਉਰਦਰ ਦੰਗਾ ਗੰਗੋ ਕਰਤਾ ਪਰੰ ਪਰਮ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰੰਗ ਪਰੋਸ਼ ਬਾਲੰ ਸਦਾ ਸਰਵਦਾ ਸਿੱਧ ਦਾਤਾ ਦਿਆਲੰ ਅਸ਼ੇਤੀ ਬੇਦੀ ਨਾਮੰਗ ਕਾਮੰ ਸਮਾਸਤੁ ਬਰਾਜੀ ਸਮਾਸਤਾ ਸਧਾਮੰ ਤੇਰਾ ਜੋਰ ਜਾ ਚਰੀ ਛੰਦ
जलेहां सलेहां पीता बेहां प्रभु आजुआ दे सबे सहे भुजंग प्रयाद शंभ अगाध्य अबाध्य नंदी स्वरूपे नमो सर्व मान्य समाज दीन धान्य नमास्तंग नरनाथे नमास्तंग परमाथे नमास्तंग गंजे नमास्तंग पंजे नमास्तंग काले नमास्तंग पाले नमो सर्वदेशे नमो सर्वभेषे नमो राजराजे नमो साज साजे नमो शाशाहे नमो महामाहे नमो गीत गीते नमो प्रीत प्रीते नमो रोग रोगे नमो सुख सुखे नमो सर्वरोगे नमो सर्वभोगे नमो सर्वजीतंग नमो सर्वभीतंग नमो सर्वज्ञानं नमो परमतानं नमो सर्वमंत्रं नमो सर्वजंत्रं नमो सर्वदृष्टं नमो सर्वकृष्टं नमो सर्वरंगे दर्भंगी अनंगे नमो जीव जीवं नमो बीज बीजे अखिजे बीजे समाधं प्रसजे कृपालं स्वरूपे एको कर्मं प्रणासी सदा सर्वदा हृदि सदिंग निवासी चरपट छंद दव प्रसाद अमृत कर्मे अमृत धर्मे अखल जोगे अजल भोगे अजल राजे अटल साजे अखल धर्मंग लाग कर्मंग सर्वंग दाता सर्वंग ज्ञाता सर्वंग बाने सर्वंग माने सर्वंग प्राण सर्वंग त्राणंग सर्वंग भुगता सर्वंग जुगता सर्वंग देवंग सर्वंग भेवंग सर्वंग काले सर्वंग पाले रुवाल छंद दव प्रसाद आदि रूपनाद मूर्ति मुख पार सर्व मंत्र मान देव भेवाद उदार सर्वपालक सर्वकालिक सर्वगोपन काल जत्र तत्र विराजी अवधूत रूप प्रसाल नाम ठावना जाति जाकर रूप रंग न रेख आदि बुरखदार मूर्त जो नाद शेख देश और न भेष जाकर रूप रेख न राग जत्र तत्र दिशा विशा भी फैले वन राग नाम कामीन बेखत दामू न जाहि सर्व मान सर्वतर मान सदैव मान दाहि एक मूर्त अनेक दर्शन कीन रूप अनेक खेल खेला खेल खेलन अंत को फिर एक देव पिब न जानी जय बेदर्क देव रूप रंग न जात पात सु जानी के जेव सात मात न जात जाकर जन मरण विहीन जकर बकर फिर चतर जाकर मानी पर दीन लोक चौदह के बिख जग जापी जय जाप आदि देव नाद मूर्त सब जाप परम रूप विनीत मूर्त पूर्ण पुरख पार सर्व विश्वर जीव सुयम पव गण पंजन हार कालहीन कला संयुक्त काल पुरख देश धर्म धाम सुभर्म रहत भूतल कपेश रंग राग न रंग जाके जात पात न नाम गर्भ गंजन दोष्ट पंजन मुक्तदायक काम आप रूप अमी गान सत एक पुरख वधूत गर्भ गंजन सर्व पंजन आदि रूप असूत अंग ही न पंग न तम एक पुरख पार सर्वलायक सर्व गायको सर्व को प्रत पार सर्वगंता सर्वहंता सर्व देन पेख सर्व शास्त्र न जानी जय रूप रंग रेख परम वेद प्राण जाक नेत भगत नेत कोट सिमृत प्राण शास्त्र न आवई बोचित मद पार छंद दव प्रसाद गुणगान उधार महिमा पार आसन भंग उपमान अंग अनुभव प्रकाश निर्जन अनाश आजान बाह शाहन शाह राजन राज पानन पान दीवान देव उपमा महान इंद्रान इंद्र बालन बाल रंकान रंक कालन काल अनभूत अंग अपाप अंग गतमित पार गुणगन उदार मुनगन प्रणाम निर्भय काम अत दुत प्रचंड मित गत अखंड अलिश कर्म अदृश्य धर्म सर्ब परनाढ़ अणदंड पढ़ चाचरी संत प्रसाद गोबिंदे मकंदे उदारे अपारी हरियंग हरिंद्र नामे कामे भजंग प्रयाद संग संग चतर जकर करता चतर जकर हरता चतर जकर दानी चतर जकर जानी चतर जकर वरती चतर जकर भरती चतर जकर पाले चतर जकर काले चतर जकर पासे चतर जकर वासे चतर जकर माने आए चतर जकर दाने आए चाचरी संग ना सत्र न मित्र न परमंग न पितर न करमंग न काही अजनमंग न जाय न चित्र न मित्र पर पवित्र परि साधि साधरे सा कृष्ण भगवती छंद दव प्रसाद कथते के आशज देस है के अबिज बेस है के अगंज कर्म है के अबंज भरम है के अबिज लोक है के अदित सुख है के अवधूत वर्ण है के विभूत करण है के राजंग प्रभा है के धर्मंग तुझाए
के अशोक वर्ण है के सर्वा वर्ण है के जगत कृति है के चतरंग क्षत्रिय है के ब्रह्म स्वरूप है के अनुपानुप है के आदि देव है के अपदेव है के चतरंग विहीन है के कह दीन है के रोज रिया कर मिरा कह के बाक व्यव है के गैमल कैव है के अफुल ग्रह है के शान साय के कारण कुंद है के रोजी दहद है के राज करीम है के कर्मंग करीम है के सर्वंग कली है के सर्वंग दली है के सर्वत्र माने है के सर्वत्र दाने है के सर्वत्र गौन है के सर्वत्र भावन है के सर्वत्र देश है के सर्वत्र पेश है के सर्वत्र राज्य है के सर्वत्र साज है के सर्वत्र दीन है के सर्वत्र लीन है के सर्वत्र जाहु के सर्वत्र बाहु के सर्वत्र देश है के सर्वत्र पेश है के सर्वत्र काल है के सर्वत्र पाल है के सर्वत्र हंता के सर्वत्र गंता के सर्वत्र पेखी के सर्वत्र पेखी के सर्वत्र काजय के सर्वत्र राजय के सर्वत्र सुख है के सर्वत्र भूख है के सर्वत्र द्राण है के सर्वत्र प्राण है के सर्वत्र देश है के सर्वत्र पेश है के सर्वत्र मान्य है सदैव प्रधान आएंगे सर्वत्र जापे आएंगे सर्वत्र थापे आएंगे सर्वत्र पान आएंगे सर्वत्र मान है के सर्वत्र इंद्र है के सर्वत्र चंद्र है के सर्वं कली मैं परम फी मैं आगलो राम है के साहब कल मैं उसनो बजू आत्मा मधुरजू है हमे सुल सलाम है सुलीखत मदम है गनी मुलसगता गरीबल बरसता बलिंदल मकान है जमीन जमान है तमीरल दमान है रजू लदान है हरी फुल जी मर जाग जगी नानी कुल तरंग बेदा पंग है अजीजल नवाज है गनीमल खराज है निरुगत स्वरूप है त्रिमुगत विभूत है प्रमुगत प्रवाह है सुजुगत सुधाय सदैव स्वरूप है वेदी अनूप है समाज तो विराज है सदा सर्व साज है समाज तो सलाम है सदैव काम है निर्वाद स्वरूप है गाद अनूप है ओहंगाद रूप है अनंगनाद स्वरूप है अनंगी अनामे त्रिभंगी त्रिकामे त्रिवर्गं त्रिवादे अगंज अगाधे शुभंग सर्वभाग्य सु सर्वा नरागे त्रिभुग स्वरूप सजय सुध है कि नरकं प्रणास है पृथ्वी प्रवास है निरोकत प्रवाह है सदैव सदा है विभुक्त स्वरूप प्रजुगत अनूप है निरोक्त सदा है विभुक्त प्रवाह है अनुक्त स्वरूप प्रजुगत अनूप है जाचरी शंभ अपंग है अनंग है बेखा लेख है ब्रह्म कर्म नाद है जुगाद है अजय है भय भूत है दूत है

अजह भय भूत दूत न सदा सदंध बंध है भगत है विरक्त है नाश है प्रकाश है नचिंत है सुनिंत है अलिख अधिक है अलेख है अपेख है टाय गाय असंभ है गम है नील नाद है नित स्नित जात जाद है चरपट चंद दव प्रसाद सर्वं हंता सर्वं गंता सर्वं ख्याता सर्वं ज्ञाता सर्वं हर्ता सर्वं कर्ता सर्वं प्राणं सर्वं त्राणं सर्वं कर्मं सर्वं धर्मं सर्वं जुगता सर्वं मुक्ता रसावल शांत दव प्रसाद नमो नरकनाशे सदैवं प्रकाशे नंगं स्वरूपे भंगं वभूते ब्रह्मासं ब्रह्माते सदा सर्वसाथे अगाध स्वरूपे निर्वाध वभूते अनंगी अनामे त्रिभंगी त्रिकामे निर्भंगी स्वरूपे सर्वंगी अनूपे न पुत्र न पुत्र न सत्र न मित्र न दाते न माता न जाते न पाते निरसाकं श्रीगामि त्वमी गाय सदैवं प्रवाह जय जाय भगवती शांत दव प्रसाद कथते के आशज देश है क्या बिज बेस है क्या गंज कर्म है क्या पंज परम है क्या बिज लोक है क्या दस लोक है क्या अवधूत वर्ण है क्या विभूत करण है के राजंग प्रवाह है के धर्म ध्वजा है क्या शोक वर्ण है के सर्व वर्ण है के जगदं कृति है के चतुरंग छतरी है के ब्रह्म स्वरूप है के अनुपान उपाय के आद अदेव है के आप भेव है के चतुरंग भिन्न है के कह दीन है के रोज रिजा कर ही मेरे हाक है के पाक बेअब है के गैब गैब है के आप बोल गुनाह के शाह निशाह के कारण गुनंद के राज ग्रह

योग बन रखाए वाजा भवन वजाया वजाया वाजा पौन नौ द्वारे प्रकट किए दसवां गोत रखाया गुरुद्वारे लाए पावनी एक दसवां द्वार दिखाया तह अनेक रूप नाव नावने दसदान तरह जाई पाया कह नानकार प्यारा जियो गुफान रख गए वाजा पवन बजाया एह साचा सुहिला सच कर गावहु गाव दसुहिला कर साचा जिथे सदा सच ध्यावे सचो ध्यावे जां तुद पावहि गुरमुख ज ना बुझावहि एह सच सभना का खासम है जिस बख्श सुजन पावे कह नानक सच सुहिला सच कर गावहि आनंद सुनो बड़ भागी हो सगल मनोरथ पूरे पार ब्रह्म प्रपाया उतरे सगल बसूरे दुख रोग संताप उतरे सुनी सची बाणी संत साजन पै सरसे पूरे गुरते जानी सुनते पुनीत कहते भगत सतगुर रहा पर पूरे बिनवंत नानक गुर चरण लागे वाजे अनहद तूरे।

बेनवंत नानक गुर चरण लागे वाजे अनहद दूरे। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। तू ठाकुर तुम कहे अरदास जियो पिंड सब तेरी आस तुम मात पिता हम उदार तेरी।

जंत पाए कर संभाले सबना। जिन करते करना किया चिंता करनी ता, सो करता चिंता करे जिन पाया जग। तिस त्योहारी सा तिस

त्रिदर जत का झूठ अगर तवाओ द्वापरत में का सत अगर तवाओ कलयुग रथ अग्नि का कूड़ अगर तवाओ

प्रभ दया के मत उत्तम होए। सर्वनिधान प्रभ तेरी मया आप हो कछु न किन्हु लया। जित जित लाव हो चित लगे हर नाथ, नानक इनकै कछु न हाथ। श्लोक अगम अगाध पार ब्रह्म सोए, जो जो कह सुमुक्ता होए। सुन मिता नानक बिनवंता, साध बिना की अचर्ज कथा अष्टपदी। साध कै संगमुख उज्जल होत, साध संग मल सगली पोत। साध कै संग मिटै अभिमान, साध कै संग प्रगटै सुज्ञान। साध कै संग बुझै प्रभ नीरा, साध संग सब होत न बेरा। साध कै संग पाए नाम रतन, साध कै संग एक ऊपर जतन। साध की महिमा बरनै कौन प्राणी, नानक साध की शोभा प्रभ माहे समानी। साध कै संग अगोचर मिलै, साध कै संग सदा पर फुलै। साध कै संग आवै बस पंचा, साध संग अमृत रस पुंचा। साध संग होए सब की रेन, साध कै संग मनोहर बैन। साध कै संग नकत हूं तावै, साध संग अस्थित मन पावै। साध कै संग माया ते भिन्न, साध संग नानक प्रभ सो प्रसन्न। साध संग दुश्मन सब नीत, साधु कै संग महापुनीत। साध संग किस्यो नहीं बैर, साध कै संग न बीगा पैर। साध कै संग नाही को मंदा, साध संग जाने परमानंदा। साध कै संग नाही हौताप, साध कै संग प्रजा सब आप। आपे जाने साध बढ़ाई, नानक साध प्रभु बन आई। साध कै संग न कब हूं तावे, साध कै संग सदा सुख पावे। साध संग बस अगोचर रहै, साधु कै संग अजर सहै। साध कै संग बसै थान ऊचै, साधु कै संग महल पहुँचै। साध कै संग दृढ़ सब धर्म, साध कै संग केवल पार ब्रह्म। साध कै संग पाए नाम निधान, नानक साधु कै कुर्बान। साध कै संग सब कुल उधारै, साध संग साजन मीत कुटुंब निस्तारै। साधु कै संग सो धन पावै, जिस धन ते सब को वरसावै। साध संग धर्म राय करे सेवा, साध कै संग शोभा सुर देवा। साधु कै संग पाप पलायन, साध संग अमृत गुण गायन। साध कै संग सर्वथान गम, नानक साध कै संग सफल जन्म। साध कै संग नहीं कछ काल, दर्शन भेटत होत निहाल। साध कै संग कलोकत है, साध कै संग नरक पर हरै। साध कै संग इहां उहां सुहेला, साध संग बिचरत हर मेला। जो इच्छा सोई फल पावै, साध कै संग नांदर था जावै। पार ब्रह्म साध हृद वसै, नान कुदरै साध सुन रसै। साध कै संग सुनो हर नाओ, साध संग हर के गुण गाओ। साध कै संग ना मन ते बिसरै, साध संग सर पर निस्तरै। साध कै संग लगै प्रभ मीठा, साधु कै संग घट घट जीठा। साध संग भय आज्ञाकारी, साध संग गत भई हमारी। साध कै संग मिटे सब रोग, नानक साध भेटे संजोग। साध की महिमा भेद न जान है, जेता सुन है तेता बखियाने। साध की उपमा ते गुनते दूर, साध की उपमा रही भरपूर। साध की शोभा का नहीं अंत, साध की शोभा सदा बेअंत। साध की शोभा ऊंच ते ऊंची, साध की शोभा मूच ते मूची। साध की शोभा

कोए नानक ए लक्षण ब्रह्म ज्ञानी होए अष्टपदी। ब्रह्म ज्ञानी सदा निर्लेप जैसे जल में कमल अलेप। ब्रह्म ज्ञानी सदा निर्दोष जैसे सूर सर्व कौ शोक। ब्रह्म ज्ञानी के दृष्ट समान जैसे राज रंक कौ लागे तुल्पवान। ब्रह्म ज्ञानी के धीरज एक ज्यों बसुदा को खोदै को चंदन लेप। ब्रह्म ज्ञानी का यह गुनाओ नानक ज्यों पाव।

जैसे तर ऊपर आकाश ब्रह्मज्ञानी के मित्र सत्र समान ब्रह्मज्ञानी के नहीं अभिमान ब्रह्मज्ञानी ऊंच दे ऊंचा मन अपने है।

आत्मरस ब्रह्म ज्ञानी की ना, ब्रह्म ज्ञानी की सब ऊपर माया, ब्रह्म ज्ञानी ते कछ बुरा न पाया, ब्रह्म ज्ञानी सदा समदर्शी, ब्रह्म ज्ञानी की दृष्ट अमृत बरसी, ब्रह्म ज्ञानी बंधन ते मुक्ता, ब्रह्म ज्ञानी की निर्मल जुगता, ब्रह्म ज्ञानी का भोजन ज्ञान, नानक ब्रह्म ज्ञानी का ब्रह्म ध्यान। ब्रह्म ज्ञानी एक उपर्यास, ब्रह्म ज्ञानी का नहीं विनाश, ब्रह्म ज्ञानी का गरीबी समाहा, ब्रह्म ज्ञानी पर उपकार उमाहा, ब्रह्म ज्ञानी कह नाही धंधा, ब्रह्म ज्ञानी ले तावत बंधा, ब्रह्म ज्ञानी कह होय सो भला, ब्रह्म ज्ञानी सो फल फला, ब्रह्म ज्ञानी संग सगल उधार।

ब्रह्मज्ञानी के नाम आधार, ब्रह्मज्ञानी के नाम परवार, ब्रह्मज्ञानी सदा सद जागत, ब्रह्मज्ञानी अहंबुद्ध त्यागत, ब्रह्मज्ञानी के मन परमानंद, ब्रह्मज्ञानी के घर सदा आनंद, ब्रह्मज्ञानी सुख सहज निवास, नानक ब्रह्मज्ञानी का नहीं विनाश। ब्रह्मज्ञानी ब्रह्म का बेता, ब्रह्मज्ञानी एक संग हेता, ब्रह्मज्ञानी का होए अचिंत, ब्रह्मज्ञानी का निर्मल मंत, ब्रह्मज्ञानी जिस करे प्रवाप, ब्रह्मज्ञानी का बड़ प्रताप, ब्रह्मज्ञानी का दर्श बड़ भागी पाइय, ब्रह्मज्ञानी को बल बल जाइय, ब्रह्मज्ञानी को खोजे महेश्वर, नानक ब्रह्मज्ञानी आप परमेश्वर। ब्रह्मज्ञानी की कीमत नाहि, ब्रह्मज्ञानी के सगल मन माहि, ब्रह्मज्ञानी का कौन जाने भेद, ब्रह्मज्ञानी को सदा आदेश, ब्रह्मज्ञानी का कथिया न जाय अधाखर, ब्रह्मज्ञानी सर्व का ठाकुर, ब्रह्मज्ञानी की मित कौन बखाने, ब्रह्मज्ञानी की गत ब्रह्मज्ञानी जाने, ब्रह्मज्ञानी का अंत न पार, नानक ब्रह्मज्ञानी।

नानको अपरस सगल निस्तार अस्तपदी मिथ्या नाही रसना परस मन में प्रीत निरंजन दर्श परत्र रूप न पेख नेत्र साध की टहल संसंग हेत कर्ण न सुन काहू किंदा सब से जान आप को मंदा गुर प्रसाद दुखिया पर हर मन की बासना मन ते टर इंद्री जत पंच दोख ते रहत नानक कोट मदे को ऐसा अपरस वैष्णो सो जिस ऊपर सो प्रसन्न विष्णु की माया ते होय भिन्न कर्म करत होवे निह कर्म तिस वैष्णो का निर्मल धर्म काहो फल की इच्छा नहीं बाचै केवल भगत कीर्तन संग्राचै मन तनंतर सिमरन गोपाल सब ऊपर होवत कृपाल आप दृढ़ावर नाम जपावै नानक ओह वैष्णो परम गत पावै भगवती भगवंत भगत का रंग सगल त्याग दुष्ट का संग मन ते बिनसा सगला परम कर पूजै सगल पार ब्रह्म साध संग पापा मल खोवे तिस भगवती की मत उत्तम होवे भगवंत की टहल करे नित नीत मन तन अर्पै बिशन प्रीत हर के चरण हृदय बसावे नानक ऐसा भगवती भगवंत को पावे सो पंडित जो मन प्रबुद राम नाम आत्म है सोद राम नाम सार रस पीवे उस पंडित का उपदेश जग जीवे हर की कथा हृदय बसावे सो पंडित फिर जो न आवे वेद पुराण स्मृत बुझ है मूल सूखम मह जान अस्थूल चौ वर्णा को दे उपदेश नानक उस पंडित को सदा आदेश बीज मंत्र सर्व को ज्ञान चौ वर्णा में जपै को नाम जो जो जपै तिसकी गत होए साध संग पावे जन कोय कर कृपा अंतर उतार पस प्रेत मुग्ध पाथर को तार सर्व रोग का औखद नाम कल्याण रूप मंगल गुणगान काहू जुगत कितै न पाइया धर्म नानक दिस मिलै जिस लिखिया तुर कर्म जिसका मन पार ब्रह्म का निवास तिसका नाम सत रामदास आत्म राम तिस नजरी आया दास दसन सन पाए तिन पाया सदा निकट निकट हर जान सो दास दर गह परवान अपने दास को आप कृपा करे तिस दास को सब सो जी परे सगल संग आत्म उदास ऐसी जुगत नानक रामदास प्रभु की आज्ञा आत्म हितावे जीवन मुक्त सो कहा।

तैसा अमृत तैसी दिख खाटी, तैसा मान तैसा अभिमान, तैसा रंक तैसा राजान, जो वरताए साई जुगत, नानक ओह पुरख कही है जीवन मुक्त, पार ब्रह्म के सगले ठाओ, जित जित कर रख है तैसा तिन नाओ, आपे करन करावन जोग, प्रभ पावै सोई पुन होग, पसरे आप होए अनंत तरंग।

लोक उस्तत करह अनेक जन अंत न पारावार नानक रचना प्रवृति बहुविध अंत प्रकार अष्टपदी कई कोट होए पुजारी कई कोट आचार व्यवहारी कई कोट पै तीर्थवासी कई कोट बन पर में उदासी।

परमेश्वर के प्यारे श्लोक करण कारण प्रभ एक है दूसर नहीं को नानक तिस बलहारण जल थल महियल सोए अस्परी करण करावन करना जोग जो तिस भावे सोई होग खिन मह था उथा पनहारा अंत नहीं किस पारा वारा हुक्मे तार अधर रहावै हुक्मे उपजा हुक्म सुमावै हुक्मे ऊंच नीच व्यवहार हुक्मे अनकरंग प्रकार कर कर देखै अपनी वड्याई नानक सब मह रहया समाई प्रभ भावै मानुख गत पावै प्रभ भावै तां पात्र त्रावै प्रभ भावै बिन सास तिराखै प्रभ भावै तां हर गुण भाखै प्रभ भावै तां पत ते उधारै आप करै आपन विचारै दोहां सिरियां का आप स्वामी खेलै बिगसै अंतर जानी जो भावै सो कार करावै नानक दृष्टि अवर नावै कहो मनुख ते क्या होयावै जो तिस भावै सोई करावै इस कै हाथ होए तां सब किछले जो तिस भावै सोई करे अनजान बिथिया मह रचै जे जानत आपन आप बचै परमे भूला दह दिस्तावै निमख माहे चार कुंठ फिर आवै कर कृपा जिस अपनी भगत दे नानक ते जन नाम मिले थिन महनीच कीट को राज पार ब्रह्म ग्रीव निवाज जा का दृष्ट कछु न आवै तिस तत्काल दह दुष्प्रगटावै जा को अपनी करै बख्तीस ता का लेखा न गण जगदीस जियो पिंड सब तिसकी रास घट घट पूर्ण ब्रह्म प्रगास अपनी बंत आप बनाई नानक जीवै देख बढ़ाई इसका बल नाही इस हाथ कर्म करावन सर्व को नाथ आज्ञाकारी बपरा जियो जो तिस भावै सोई फन थियो कबहू ऊंच नीच में बसै कबहू सोग हर्ष रंग हसै कबहू निंद चिंद व्यवहार कबहू ऊब आकाश पयाल कबहू बेता ब्रह्म विचार नानक आप मिलावन हार कबहू नृत्य करै बहु पात कबहू सोय रहै दिन रात कबहू महाक्रोध विकराल कबहू सर्व की हो तरवाल कबहू होय बह बड राजा कबहू भेखारी नीच का साजा कबहू अपकीर्त में आवै कबहू भला भला कहावै ज्यो प्रभ राखै तिव ही रहै गुर प्रसाद नानक सच कहै कबहू होए पंडित करे बखियान कबहू मोन धारी लावै ध्यान कबहू तट तीर्थ स्नान कबहू सिद्ध साधक मुख ज्ञान कबहू कीट हस्त पतंग होए जिया अनक जोन भरमै भरमिया नाना रूप ज्यों स्वांगी दिखावै ज्यों प्रभ भावै तिवै नचावै जो तिस भावै सोई होए नानक दूजा अवर न कोय कबहू साध संगत एह पावै उस स्थान ते बहुर न आवै अंतर होए ज्ञान प्रगास उस स्थान का नहीं विनाश मन तन नाम रत एक रंग सदा बसह पार ब्रह्म कै संग ज्यों जल में जल आए खटाना त्यों ज्योति संग ज्योत समाना मिट गए गवन पाए विश्राम नानक प्रभ कै सद कुर्बान श्लोक सुखी बसै मस्कीनिया आप निवार तले बड़े बड़े अहंकारिया नानक गर्भ गले अष्टपदी जिसके अंतर राज अभिमान सो नरक पाती होवत स्वान जो जान मैं जो बनवंत सो होवत बिस्ता का जंत आप स्काओ कर्म बंत कहावै जन्म मरे बहु जोन प्रमावै धन भूम का जो कर गुमान सो मूर्ख अंधा अज्ञान कर कृपा जिसके हृदय गरीबी वसावै नानकी हां मुक्त आगै सुख पावै धनवंता होय कर गरबावै तृण समान कछ संग न जावै बहु लश्कर मानुख ऊपर करे आस पल भीतर ताका होए विनाश सब ते आप जानै बलवंत छिन मह होए जाए भसमंत किसै न बदै आप अहंकारी धर्म राय तिस करे खुआरी गुर प्रसाद जा का मिटा अभिमान
सो जन नानक दरगह परवान कोट कर्म करे हम तारे शर्म पावे सगले बिरथारे अनक तपस्या करे अहंकार नरक सुर्ग फिर अवतार अनक जतन कर आत्म निंद्रवै हर दरगह को कैसे गवै आपस को जो भला कहावे तिसे भलाई निकट न आवै सर्व की रेन जाका मन होए कहो नानक ताकि निर्मल सोए जब लग जाने मुझते कछ होए तब इसको सुख नाही कोए जब ए जाने मैं किछ करता तब लग गर्भ जो मैं फिरता जब तारे को बैरी मीत तब लग नहीं चलना ही चीत जब लग मोह मगन संग माए तब लग धर्म राय देश जाए प्रभ कृपा ते बंधन टूटे गुर प्रसाद नानक हाँ छूटे सहस खटे लख कौ उठतावे तृप्त न आवे माया पाछे पावे अनक भोग दिखिया के करे न तृप्तावे खप खप मरे बिना संतोख नहीं को राजय स्वप्न मनोरथ बिरथे सब काजय नाम रंग सर्व सुख होए बड भागी किसै प्राप्त होए करन करावन आपे आप सदा सदा नानक हर जाप करन करावन करने हार इसके हाथ कहाँ विचार जैसी दृष्ट करे तैसा होए आपे आप प्रभ सोए जो किछ कीनो सो अपने रंग सब से दूर सब हूँ कै संग बुझै देखै करे बदेक आप है एक आप है अनेक मरे न मिलत आवे न जाए नानक सद ही रहया समाए आप उपदेश समझ आपे रचिया सब कै साथ आप कीनो आपन विस्तार सब कछ उसका ओ करने हार उससे भिन्न कहो किछ होए थान तनंतर एक सोए अपने चलित आप करने हार कौतुक करे रंग आपार मन मह आप मन अपने माह नानक कीमत कहन न जाए सत सत सत प्रभ स्वामी गुर प्रसाद किने वकियानी

अत सुंदर अपार अनूप निर्मल निर्मल निर्मल तेरी बाणी घट घट सुनी श्रवण बखाणी पवित्र पवित्र पवित्र पुनीत नाम जपै नानक मन प्रीत। श्लोक संत शरण जो जन पर सो जन उदर नहार संत की निंदा नानका बहुर बहुर अवतार। अष्टपदी संत का दुखन आर जा कटे संत का दुखन जमते नहीं छुटे संत का दुखन सुख सब जाए संत का दुखन नरक न पाए संत का दुखन मत होए मलीन संत का दुखन शोभा ते हीन संत के हते को रखे न कोय संत का दुखन तान प्रस्त होए संत कृपाल कृपा जे करे नानक संत संग निंदक भी तरे संत के दुखन ते मुख पवे संतन का दुखन काग जो लवे संतन का दुखन सर्प जोन पाए संत का दुखन त्रिगत जोन किरमाए संतन का दुखन तृष्णा में जले संत का दुखन सब को चले संत का दुखन तेज सब जाए संत का दुखन नीच नीच आए संत दुखी का थाओ को नाहे नानक संत पावे ता ओए की गत पाए। संत का निंदक महा अतताई संत का निंदक खिन टिकन ना पाई संत का निंदक महा हत्यारा संत का निंदक परमेश्वर मारा संत का निंदक राज ते हीन संत का निंदक दुखिया अर्दीन संत के निंदक को सर्व रोग संत के निंदक को सदा विजोग संत की निंदा दोख में दोख नानक संत पावे ता उसका भी होए मोख। संत का दुखी सदा अपवित संत का दुखी किसै का नहीं मित संत के दुखी को दान लागे संत के दुखी को सब त्यागे संत का दुखी महा अहंकारी संत का दुखी सदा भिकारी संत का दुखी जन्म मरे संत की दुख ना सुख के टरे संत के दुखी को नाही ठाओ नानक संत भावे ता ले मिलाए संत का दुखी अध बीच से टूटे संत का दुखी कित काज ना पहुँचे संत के दुखी को ध्यान परमाई है संत का दुखी उजड़ पाई है संत का दुखी अंतर ते थोथा जो सास बिना मृतक की लोथा संत के दुखी की जड़ किछ ना है आपन बीज आपे ही खाहे संत के दुखी पावन राखन हार नानक संत पावे तां ले उबार। संत का दुखी यों बिललाए ज्यों जल बिहून मछली तड़फड़ाए संत का दुखी भूखा नहीं राजा ज्यों पावक ईंधन नहीं त्रापे संत का दुखी छुटे अकेला ज्यों बुआड़ तिल खेत माहें दोहेला संत का दुखी धर्म ते रहत संत का दुखी सदम त्या कहत किरत निंदक का तुर ही पया नानक जो तिस भावे सोई थया संत का दुखी बिगड़ रूप होए जाए संत के दुखी को दरगह मिले सजाए संत का दुखी सदा सहकाई है संत का दुखी ना मरे ना जीवाई है संत के दुखी की पूजा न आशा संत का दुखी उठ चले निराशा संत का दुख न त्रिष्ट कोई जैसा पावे तैसा कोई होए पया किरत न मिट कोई नानक जाने सच्चा सोए सब घट तिसके ओह करने हार सदा सदा तिसको नमस्कार प्रभु की उस्तद करहो दिन रात तिसह त्याग हो साज गिरात सब कछ वरत तिसका किया जैसा करे तैसा कोथिया अपना खेल आप करने हार दूसर कौन कह विचार जिसनो कृपा करे तिस अपन नाम दे बड़ भागी।

पाओ नानक कह मन एह नराव मनसा पूर्ण सरना जोग जो कर पाया सोई होग हरन भरन जाका नेत्र फोर तिसका मंत्र न जाने होर आनंद रूप मंगल सब जाकै सर्व थोक सुनिया है घर ताकै राज महराज जोग मह जोगे तप मह तपीसर ग्रस्त मह भोगे त्याए त्याए भगत सुख पाया नानक तिस पुरख का किन अंत न पाया जाके लीला की नित नाहे सगल देव हारे अवगाहे पिता का जन्म के जाने पूत सगल परोई अपने सूत सुमत ज्ञान ध्यान जिन

पाई सब घट तिसके सब तिसके थाओ जप जपती वै नानक हर नाओ नाम के तारे सगले जंत नाम के तारे खंड ब्रह्मंड नाम के तारे सिमृत वेद पुराण नाम के तारे सुनन ज्ञान ध्यान नाम के तारे आकाश पाताल नाम के तारे सगल आकार नाम के तारे पुरिया सब पवन नाम के संग उदरे सुन सरवन कर कृपा जिस आपने नाम लाए नानक चौथे पद में सो जन गत पाए रूप सत जाका सत अस्थान पुरख सत केवल प्रधान करतूत सत सत जाकी बाणी सत पुरख सब माहे समाणी सत कर्म जाकी रचना सत मूल सत सत उत्पत सत करणी निर्मल निर्मली जिसह बुझाए तिसह सब भली सत नाम प्रभ का सुखदाई विश्वास सत नानक गुर ते पाई सत बचन साधु उपदेश सत ते जन जा कर दे प्रवेश सत नित बुझे जे कोय नाम जपत ताकी गत होए आप सत किया सब सत आपे जाने अपनी मित गत जिसकी सृष्ट सो करण हार अगर न बूझ करत भी

सास सास सुमार है, अपने जनका पर ढाक है, अपने सेवक की सर पर रख है, अपने दास को दे बढ़ाई, अपने सेवक को नाम जपाई, अपने सेवक की आप पत्र रख है।

जानो आठ पहर प्रभ सहजुरे को नानक से जन पूरे मन मेरे तिन की ओट लेह मन तन अपना तिन जन देह

लौटावै। आवर सियानप सगली छाड़, तिस जन की तू सेवा लाग, आवन जान न होवे तेरा, नानक तिस जन के पूजो सब पैरा। श्लोक सतपुरख जिन जानिया, सतगुर तिसका नाओ, तिसकै संग सिख उदरै, नानक हर गुण गाओ। अष्टपदी सतगुर सिख की करै प्रतपाल, सेवक कौ गुर सदा दयाल, सिख की गुर दुरमत मल हिरै, गुर बचनी हर नाम उचरै, सतगुर सिख के बंधन काटै, गुर का सिख विकार ते हटै, सतगुर सिख को नाम धन दे, गुर का सिख बड़ भागी है, सतगुर सिख का हलत पलत सवारै, नानक सतगुर सिख को जी नाल सुमारै, गुर कै ग्रह सेवक जो रह, गुर की आज्ञा मन में सह, आपस को कर

ब्रह्म रंग राता, ब्रह्म मैं जन जन मैं पार ब्रह्म, एक है आप नहीं कछ परम। सहस सियाणप लिया न जाइए, नानक ऐसा गुरबड भागी पाइए। सफल दर्शन पेख पुनीत, परसत चरण गत निर्मल रीत। भेटत संग राम गुण रवे, पार ब्रह्म की दरगह गवे। सुनकर बचन करन आघाने, मन संतोख आत्म पतियाने। पूरा गुरख हो जाका मंत्र, अमृत दृष्ट पेख होय संत।

ना पहुँच प्राणी, अगम अगोचर प्रभ निर्बानी, निराहार निर्वैर सुखदाई, ताकि कीमत किने न पाई। अनक भगत बंदन नित करहे, चरण कमल हृदय सिमरहे, सद बलिहारी सदगुरु अपने, नानक जिस प्रसाद ऐसा प्रभ जपने। एहो हर रस पावै जन कोय, अमृत पीवै अमृत सो होय, उस पुरख का नाही कदे विनाश, जाकै मन प्रगटे गुणतास। आठ पहर हर का नाम ले, सत उपदेश सेवक कौ दे, मोह माया कै संग न लेप, मन मह राखै हर हर एक, अंधकार दीपक प्रगासे, नानक परम मोह दुख तहते नासे। तपत माहे ठांड वरताई, अनंद भया दुख नाठे भाई, जन्म मरण के मिटे अंदेसे, साधु के पूर्ण उपदेसे। भौ चूका निर्भौ हे वसे, सगल व्याध मन ते खै नसे, जिसका सातन कृपा धारी, साध संग जप नाम मुरारी, सित पाई चूके भ्रम गवन, सुन नानक हर हर जस सरवन। निर्गुण आप सरगुण ही ओही, कला तहार जिन सगली मोही, अपने चरित प्रभ आप बनाए, अपनी कीमत आपे पाए।

नानक बलिहारी। श्लोक साथ न चाले बिन भजन, दिखिया सगली चार, हर हर नाम कमावन, नानक एह धन सार। अष्टपदी संत जना मिल करो विचार, एक सिमर नाम आधार, अवर उपाव सब मीत बिसार हो, चरण कमल हृद में उरतार हो, करण कारण सो प्रभ सिमरथ, दृढ़ कर गह हो नाम हर वक्त, इहो धन संच हो वो भगवंत, संत जना का निर्मल मंत, एक आस रख हो मन माही, सर्व रोग नानक मिट जाहे, जिस धन को चार कुंठ उठताव है, सो धन हर सेवा ते पाव है, जिस सुख को नित बाछ मीत, सो सुख साधु संग प्रीत, जिस शोभा को करे भली करनी, सा शोभा भज हर की सरणी, अनक उपावे रोग न जाए, रोग मिटे हर अवखद लाए, सर्व निधान में हर नाम निधान, जप नानक दरगह परवान, मन पर बोधो हर कहनाई, दह दिस ताव च आवे ठाए, ताको बिघ्न न लागे कोए, जा कर दह बसे हर सोए, कल ताती ठंडा हर नाओ, सिमर सिमर सदा सुख पाए।

कहै जन साचा, जन्म मरै सो काचो काचा, आवागमन मिटै प्रब सेव, आप त्याग शरण गुरुदेव। यों रतन जन्म का होए उधार, हर हर सिमर प्राण आधार, अनक उपाव न छूटन हारे, सिमरत शास्त्र भेद विचारे, हर की भगत करो मन लाए, मन बंछत नानक फल पाए, संग न चालस तेरा तना, तू क्या लपटाव है मूर्ख मना, सुत मीत कुटुंब अर बनता, इनते कहो तुम कवन सनाथा, राज रंग माया विस्तार, इनते कहो कवन छुटकार, अस हस्ते रथ हसवारी, झूठा डंप झूठ पासारी, जिन दिए तिस बुझै नाम बिगाना, नाम विसार नानक पछताना। गुर की मत तू लेह आने, भगत बिना बहु डूबे स्याने, हर की भगत करहो मन मीत।

अपनी भक्ति लाए। अष्टपदी जात जन जाचा प्रवदान कर कृपा देवो हर नाम। साध जना की मांगो तूर पार ब्रह्म मेरी श्रद्धा पूर। सदा सदा प्रभु के गुण गावो सास सास प्रभु तुम्हें त्यावो।

प्रभु की दृष्ट महासुख होए, हर रस पावे दुर्ला कोय। जिन चाख्या से जन तृप्ता ने, पूर्ण पुरुख नहीं डोला ने। सुभर परे प्रेम रस रंग, उपजा चाओ साध कै संग। परे सरन आन सब त्याग, अंतर प्रगास अनदिन लिवलाग। बड़ भागी जपया प्रभ सोए, नानक नाम रते सुख होए। सेवक की मनसा पूरी पई, सतगुर ते निर्मल मत लई।

सिरजा। अष्टपदी जब अकार त्यो कसना दृष्टेता, पाप पुन तब कहते होता। जब धारी अपन सुन समाद, तब बैर विरोध किस संग कमात। जब इसका वर्ण चिन्ह न जापत, तब हर्ष शोक कहो किसे व्यापत। जब अपन आप आकार ब्रह्म, तब मोह कहाँ किस होवत परम। अपन खेल आप वर्ती जा, नानक करने हार न दूजा। जब होवत प्रभु केवल धनी, तब बंद मुक्त कहो किस को गनी। जब एक हर अग्न पार, तब नर्क स्वर्ग कहो कौन अवतार। जब निर्गुण प्रभु सहज स्वभाई, तब शिव सकत कहो कित ठाए। जब आप है आप अपनी ज्योत धरे, तब कवन निड्र कवन कत डरे। अपने चलत आप करने हार, नानक ठाकुर अग्न अपार। अब नास्ती सुख अपन आसन, तह जन्म मरण कहो कहाँ विनाशन। जब पूर्ण करता प्रभु सोए, तब जम की त्रास कहो किस होए। जब अवगत अगोचर प्रभु एका, तब चित्र गुप्त किस पूछत लेखा। जब नाथ निरंजन अगोचर अगाधे, तब कौन छुटे कौन बंधन बाधे। आपन आप ही अचरजा, नानक आपन रूप आप ही उपरजा। जह निर्मल पुरख पत होता, तह बिन मैल कहो क्या तोता। जह निरंजन निरंकार निर्वाण, तह कौन कौमान कौन अभिमान। जह स्वरूप केवल जगदीश, तह शल छिद्र लगत कहो कीस। जह ज्योत स्वरूपी ज्योत संग समावै, तह किसे भूत कवन तृप्तावै। करण करावन करना हार, नानक करते का नाही सुमार। जब अपनी शोभा आपन संग बनाए, तब कवन माए बाप मित्र सुत पाए। जह सर्व कला आप है परवीन, तह वेद पितेव कहाँ को चीन। जब आपन आप उतार है, तो सगन अपसगन कहाँ।

अथाह अगंत अतोले, ज्यों बुलाव हो त्यों नानक दास बोले। श्लोक जी जंत के ठाकुरा आपे वर्तनहार, नानक एको पसरिया दूजा कह दृष्टार। अष्टपदी आप कथा आप सुन में हार, आप है एक आप विस्तार। जंत पावे तं सृष्ट उपाय, अपने पाणे लय समाए। तुम ते भिन्न नहीं किछ होए, आपन सूत सब जगत परोए। जा को प्रभु जीव आप बुझाए, सच नाम सोई जन पाए। सो समदर्शी तत्कविता, नानक सगल सृष्ट का जेता। जी जंत्र सबता के हाथ, दीन दयाल अनाथ को नाथ। जिस राख

दयाल, सब ऊपर होवत कृपाल, अपने कर्तव्य जाने आप, अंतरजामी रहो व्याप, प्रतपाल जीअन बहु पात, जो जो रचे सो तिसह त्यात, जिस पावै तिस लय मिलाए, भगत करहे हर के गुण गाए, मन अंतर विश्वास कर मान्या, करनहार नानक इक जान्या, जन लागा हर एक नाए, तिसकी आस न बिरथी जाए, सेवक कौ सेवा बन आए, हुकम बूझ परम पद पाए, इससे ऊपर नहीं विचार, जाके मन बसया निरंकार, बंधन तोर भय निर्वैर, अनगन पूजे गुरु के पैर, एह लोक सुखिए परलोक सुहेले, नानक हर प्रभ आपे मेले, साध संग मिल करो आनंद, गुण गावो प्रभ परमानंद, राम नाम तत करो विचार, दुर्लभ दे का करो उधार, अमृत बचन हर के गुण गाओ, प्राण तरन का यह सुहाओ, आठ पहर प्रभ वेखो नेरा, मिटे अज्ञान बिन सह अंधेरा, सुनो उपदेश हृदय बसाओ।

नानक तन मैं इहो विश्वास संत जना का पेखन सब ब्रह्म संत जना के हृदय सब धर्म संत जना सुने शुभ वचन सर्व व्यापी राम संग्रचन जिन जाता तिसकी एह रहत सत बचन साधु सब कहत जो जो होए सोई सुख माने कर्म करावन हार प्रभ जाने अंतर बसे बार पी ओही नानक दर्शन देख सब मोही आप सत किया सब सत तिस प्रभते सगली उत्पत तिस पावै ता करे विसार तिस पावै ता एकंकार अनक कला लखी न जाए जिस पावै तिस लय मिलाए कवन मिट कवन कहिए दूर आपे आप आप भरपूर अंतर्गत जिस आप जनाए नानक तिस जन आप बुझाए सर्व भूत आप वरतारा सर्व नैन आप पे खनहारा सगल समग्री जा का तना आप न जस आप ही सुना आवन जान एक खेल बनाया आज्ञाकारी की नी माया सब कह मत अलिप्त रह जो किस कहना सो आपे कह आज्ञा आवे आज्ञा जाए नानक जा पावे ता लय समाए इसते होए सो नाही बुरा और कहो किने कछ करा आप भला करतूत अतनी की।

ताकि गत मित कहीं न जाए, दूसर होए तसो जी पाए। तिसका किया सब परवान, गुरप्रसाद नानक एह जान। जो जाने तिस सदा सुख होए, आप मिलाए लय प्रभ सोए। ओह धनवंत कुलवंत पतवंत, जीवन मुक्त जिस हृदय भगवंत। तन तन तन जनाया, जिस प्रसाद सब जगत तराया। जन आवन का एह सुआओ, जन के संग चित आवे नाओ। आप मुक्त मुक्त करे संसार, नानक तिस जन को सदा नमस्कार। श्लोक पूरा प्रभ आराध्या, पूरा जा का नाओ। नानक पूरा पाया, पूरे के गुण गाओ। अष्टपदी पूरे गुरु का सुन उपदेश, पार ब्रह्म निकट कर देख। सास सास सिमरो गो

0: संवेदना की धूल मन मंग आप छोड़ बेनती करो साध संग अग्न सागर तरहो हर धन के भर लेहो भंडार नानक गुरपुरे नमस्कार खेम कुशल सहज आनंद साध संग भज परमानंद नरक निवार उदार हो जियो गुण गोविंद अमृत रस पियो चित जित वो नारायण एक एक रूप जाके रंग अनेक गोपाल दामोदर दीन दयाल दुख भंजन पूर्ण कृपाल सिमर सिमर नाम बारंबार नानक जी का यह आधार उत्तम श्लोक साध के बचन अमलीक लाल एह रत्न सुनत कुमावत होत उधार आप तरह लोक कह निस्तार सफल जीवन सफलता का संग जाकर मन लागा हर रंग जय जय शब्द अनाहत वाजय सुन सुन अंद करे प्रभु का जय प्रगटे गोपाल महान कह माते नानक उदरे तिन कह साथे शरण जोग सुन सरनी आए कर कृपा प्रभु आप मिलाए मिट गए बैर भय सबरेन अमृत नाम साध संग लैन सो प्रसन्न भय गुरुदेव पूर्ण होए सेवक की सेव आल जंजाल विकार ते रहते राम नाम सुन रसना कहते कर प्रसाद दया प्रभारी नानक ने भी खेप हमारी प्रभु की उस्तत करो संत मीत सावधान एकाग्र चीत सुखमनि सहज गोविंद गुण नाम जिस मन बसै सो होत निधान सर्व इच्छा ताकि पूर्ण होए प्रधान पुरख प्रगट सब लोए सब ते उच पाए स्थान बहुर न होवे आवन जान हर धन खाट चलै जन सोए नानक दिसे प्राप्त होए खेम शांत रिद नवनिध बुद्ध ज्ञान सर्व तह सिद्ध विद्या तप जोग तप ध्यान ज्ञान श्रेष्ठ उत्तम इशनान चार पदार्थ कमल प्रगास सब कै मद सगल ते उदास सुंदर चतुर तत्का वेता समदर्शी एक दृष्टेता ए फल तिस जन कै मुख तने गुरु नानक नाम बचन मन सुने एहो निधान जपै मन कोए सब जुग मह ताकि गत होए गुण गोविंद नाम धुन बाणी सिमरत शास्त्र वेद बखाणी सगल मतांत केवल हर नाम गोविंद भगत कै मन विश्राम कोट अपराध साध संग मिटै संत कृपा ते जम ते छुटै जा कै मस्तक कर्म प्रभ पाए साध शरण नानक ते आए जिस मन बसै सुनै लाए पीत तिस जन आवै हर प्रवजीत जन्म मरण ता कर दुख निवारै दुलभ देह तत्काल उधारै निर्मल शोभा अमृतता की बाणी एक नाम मन मह समानी दुख रोग मन से पै परम साध नाम निर्मलता के कर्म सब ते उच्चता की शोभा बनी नानक के गुण नाम सुखमनी सब ते ऊच ताकि शोभा बनी नानक एह गुण नाम सुखमनी वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह
1: केरबू दी रंगीली धरती दे वसनीक स्रोतियो तुसी ए प्रोग्राम FM रेडियो CISK 94.3 तो सुन रहे हो ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਵੈਸਨ ਸਿੰਘ ਸਵਾ ਵਿਲੀਅਮਸ ਲੇਕ ਤੋਂ ਪ੍ਰਸਾਰਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਮੀਦ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵੀ ਖੋਜ ਭਰਪੂਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਸੁਝਾਅ ਦਿੰਦੇ ਰਹੋਗੇ ਸਾਡੇ ਸਟੂਡੀਓ ਦੇ ਟੈਲੀਫੋਨ ਨੰਬਰ ਤਾਂ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ ਜੇ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਲਿਖ ਲਓ ਜੀ ਏਰੀਆ ਕੋਡ 250-392-3374 ਅਤੇ ਫੈਕਸ ਨੰਬਰ ਏਰੀਆ ਕੋਡ 250-392-3375
2: ਸਾਡਾ ਈਮੇਲ ਐਡਰੈਸ ਨੋਟ ਕਰੋ ਜੀ singhsabha2@gmail.com ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਨੋਟ ਕਰੋ ਜੀ singhsabha2@gmail.com
3: You are listening Sikh Radio broadcasting from Gurdwara Sahib Western Singh Sabha at Williams Lake. Any comments and suggestions please call 250-392-3874.

0: केवोदी रंगीली धरती दे वसनीक स्रोतियो, तुसी ये प्रोग्राम FM रेडियो CISK 94.3 तो सुन रहे हो। ये प्रोग्राम गुरुद्वारा साहिब वैष्णव सिंह सवा विलियम्स लेक तो प्रसारित किया जा रहा है। उम्मीद रखते हाँ कि इस प्रोग्राम नु होर भी खोज भरपूर बनाउण लई तुसी सानू सुझाव दिंदे रहोगे। साडे स्टूडियो दे टेलीफोन नंबर तां आप जी नू पता ही है, जे नहीं तां ओ भी लिख लो जी। एरिया कोड 250-392-3074 अते फैक्स नंबर एरिया कोड 250-392-3075।
1: साडा ईमेल एड्रेस नोट करो जी, singhsabha2@gmail.com। एक बार फिर नोट करो जी, singhsabha2@gmail.com।
2: You are listening Sikh Radio broadcasting from Gurdwara Sahib Western Singh Sabha Williams Lake. Any comments and suggestions please call 250-392-3874.

मीटिंग विच सतगुरु दा सेवादार सीआईडी करन वास्ते अपना भेस बदल के गया से उन्हें सारिया गल्लां सी जिहड़ियां नोट कीतियां आके सतगुरु नूं दस्सिया दीवान सजिया विया से महाराज कल नूं हाथे नूं शराब पिया के आके पहाड़ी राजे छड़नगे सारी गल दस दित्ती ते संगत विचों आवाज आए सतगुरु आपां नूं भी कोई हाथी का प्रबंध है जिहड़ा कर लेना चाहिए सतगुरु हुण सिखी की परख कर रहे हैं टोर के वेख रहे हैं ते महाराज कहण लगे हाथी का प्रबंध तो साडे कोले कीता होया सतगुरु किहड़े तबेले विच बंधा सानू दर्शन तां करवाओ महाराज कहण लगे हाथी तो साडे कोले ही बैठा है सतगुरु ने दुनी चंद मसंद बनी हथ कर दिता लंगर का इंचार्ज सी बहुत मोटा ताजा से महाराज कहण लगे ये साडा हाथी है महाराज नूं कहिंदा दुनी चंद सच्चे पातशाह मैनू किते भलेखे ना तो नहीं आखी जांदे महाराज कहण लगे नहीं दुनी चंदा तैनू हाथी ना लड़ाउणा है ते उठ के संगत नूं दर्शन दे हुण भारे बंदे तो छेती उठिया भी नहीं जांदा हुंदा एक जो हाथी का ना लिया दुनी चंद का सा सा उदो ही मुक गया यह बस तीन चार किस्तों में मौसा ही उठे आ उठ के कह लग्या सतगुरु तू तो तुहाडी मर्जी है पर मेरे बिना गंगा युद्धां दीआं गल्लां इहो जिहीआं हुंदीआं तुहानू पता है मेरे विच ताकत तो बड़ी है एक हाथी के कई हाथी होण दा मैं मुकाबला कर सकदा पर कई बारी ऐसा हुंदा है जे मैनू हाथी ने मार दिता शहीद करता सारा आ लंगर पानी का प्रबंध है जरा इस मेरे बिना चलना नहीं गा सतगुरु कहन लगे कोई नहीं चला लवेंगे जो तैयारी कर कहना जी मेरे बिना तो देग ही नहीं बननी महाराज कहते देग बनाने अस बना ला करा ड्यूटी ला दें कहना जी फिर मेरे बिना बरता ही नहीं जाने जवाब सवाल करी जाता सतगुरु न महाराज कहंदे देग वरताउणी कोई औखी है कहंदा महाराज सिगरां वाले दिन मेरा हाल वेख्या करो जदों संगतां आउंदियां बहुतियां उदों मैं कहंदा थोड़ी थोड़ी किणका किणका देग वरताउणा ते जदों संगतां आउंदियां थोड़ियां ते उदों मैं दूरा गप्पा वरता देना सतगुरु कहण लगे सारा प्रबंध है दुनिया जिन्ना असीं कर लवांगे पर तू तैयारी कर जंग विच लड़न दी लो ਨਾਲਦਿਆਂ ਨੂੰ ਦਿਨ ਦਾ ਛਿਪ ਗਿਆ ਹਨੇਰਾ ਜਾ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਨਹਾਲਦਿਆਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਨਾ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਜਾ ਕੇ ਬੈਠ ਗਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਮਸੰਦਾਂ ਨੂੰ ਗੱਲ ਸੁਣੋ ਭਰਾਓ ਕੱਲ ਨੂੰ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਹਾਥੀ ਨਾਲ ਲੜਾ ਦੇਣਾ ਤੇ ਪਰਸੋਂ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੀ ਵਾਰੀ ਆ ਜਾਣੀ ਹੈ ਇਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਫਿਰ ਹੁਣ ਕਿਵੇਂ ਕਰੀਏ ਕਹਿੰਦੇ ਆਪਾਂ ਕਿਲੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ ਗਾ ਮੈਨੂੰ ਜੁਗਤਾਂ ਬਹੁਤ ਆਉਂਦੀਆਂ ਕਿਲੇ ਚੋਂ ਨਿਕਲਣੀਆਂ ਤੇ ਜਦੋਂ ਕਿਲੇ ਮੈਨੂੰ ਜੁਗਤਾਂ ਬਹੁਤ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਆਪਾਂ ਕਿਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ ਤੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗਿਆ ਵੀ ਹੁਣ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਿਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਕੱਲੇ ਹੋਣਗੇ ਜਦੋਂ ਸੰਗਤ ਨੂੰ

केवल ते केवल वनगी मात्र मैं कुछ गल्ला अंकित कर सके। गुरु आखद केवल वनगी मात्र जिस तरह बाबा रामदास जी ने आखिया कहन लगे।

रोशनी चानन सीमित हो गए ते मेरा सीमित ही ना हो गए उनकी चिमनी नू मैल भी लग जाए। सतलाज दूर तक पैंदी है लंप लालटन दी रोशनी थोड़ी दूर तक जाती है। मैं एक बार की किसी लालटन दी लैंप दी चिमनी नू भी रोज मैल लग जाती है ते वो मैल के तो बाहरों नहीं आती वो सीमित चानण दे विचों ही जन्म लेती है। लैंप दी रोशनी है जेदों जगांदे अजकल ते खत्म हो गई। पुराने समय में लैंप जगदी ते लैंप दी रोशनी लाट दे विचों ही कालख निकलती सी जेड़ी लैंप दी चिमनी नू काला कर दिंदी। ते वो जेड़ी लिमिटेड जी सीमित जी रोशनी हुंदी है ना लैंप विच ओ भी बाहर नहीं सी आउंदी। किन्नी क दूर भला मैली चिमनी वाली लैंप किन्नी क दूर तक राह दिखा सकती है। बस मुश्किल बन आउंदी। गुरु कहते हैं जे किसी की बुद्धि होवे सीमित मेरी मत सीमित है लैंप वर्गी है पर जिन्ना का थोड़ा जा ज्ञान है ना उनके अंदरों भी होमे की मल लग गई कालख पैदा हो गई। ज्ञानवान ही होमे वाला होंगे जिनका ज्ञान सीमित होवे ते होमे होवे मैं रब नू जान सकना मैं वड्डा भगत हाँ मैं ज्ञानी हाँ तो मानो एक ते मत सीमित ज्ञान सीमित लैंप की रोशनी ते फिर उनकी चिमनी उनके ज्ञान विच्चों ही निकल के होमे की मैल लग गई। हम किन्नी क दूर देख सकता है ते गल्लां करदा रब दी। गुरु कहते हैं

तेरा हर एक करण भाव कर्म, तेरा हर एक कर्म तेरा गुण है, ते हर एक गुण तेरा नाम है। पिछले दिहाड़े में नाम की परिभाषा में यह आ चुका है कि रब का नाम किसी ने रखा नहीं, क्योंकि उनका मां बाप कोई नहीं है, उनका कर्म ही उनका नाम बन गया। जो कुछ करता चला जा रहा है वो ही उनका नाम है। जेता कीता तेता नाम, जे वो करता कुछ ना तो उन्हें कोई की आख के पुकारता, क्योंकि मां बाप तो है नहीं। कबीर को स्वामी ऐसो ठाकर जा को माई ना बाप दे, है नहीं, किसने उनका नाम रखना। जे ना कोई ना हुंदा तो फिर विश्वास करियो संबोधन किवें बनता, संबोधन भी कोई ना हुंदा, कोई की आख के बुलांदा मेरे रब नू। बस उन्हें कुछ करना शुरू कर दिता, ज्यों ज्यों करी गया त्यों त्यों हर उनका कर्म उनका नाम बनी गया। हुण इन्ना कुछ बना बैठा है, इन्ना कुछ कर सकया ते इन्ना कुछ करी जांदा है कि नाम भी इन्ने हो गए ने, कोई कई कोट नव तन नाम दिहावे नानक करते का अंत ना पावे। की करेंगे जेता कीता तेता नाम। श्री गुरु ने पर सर्व नाम कथा कमन है, कर्म नाम वर्णक सुना, जो कुछ तू कीता है वो ही नाम है। ते कोई थां कोई ठिकाना कोई जीव कोई जंत ऐसा नहीं जेड़ा तू ना बनाया हो, जिन्हू तू ना सिरजिया हो, जिस रूप में सिरजिया जो कुछ तू जीव जंत ब्रह्मांड में पैदा किया वो तेरे गुण की निशानी है, गुण का प्रतीक। बिना तेरी मर्जी के कोई चीज पैदा ही नहीं हुई। मैं जिथों तक देख सकिया ना मैं उथों तक ही जिक्र कर सकिया, बुद्धि नाल या कर्म नाल। मेरे कर्म भी सीमित ने, मेरी बुद्धि भी सीमित है। कर्म राही पहुंच पैदा कर, मत राही ज्ञान राही सोच राही दूरंदेशी राही पहुंच पैदा कर, हर चीज की सीमा है। तो जिथों तक देखांगा उथों तक ही पहुंचांगा, उथों का जिक्र करांगा। बस तेरा जिक्र भी मेरी जबानी से जदों आंदा है ना, बस उस ही सीमा में आंदा है। आप अपनी बुद्ध है जेती, वर्णित भिन्न भिन्न तेती, तुमरा लखा न जाए पसारा। मैं ते तेरी तेनू जानना तक ते रह गया, तेरी कुदरत की सीमा ही नहीं जानता। कह लगी तुमरा लखा न जाए पसारा, के बिद सजा प्रथम संसारा। अजे तक कोई इन्ना ही नहीं जान सकिया प्रथम सब तो पहला तू संसार में किवें सिरजिया, अपने अपने क्याफे लगाई जांदा है। जे असलियत का पता किसी नूं होवे फिर क्याफे वख वख ना होन, अंदाजे वख वख ना होन, कहानियां वख वख ना होन, हर किसी दे अपनी पहुंच दे अंदाजे ने। एक ख्याल करो गुरु कहते यह भी एक गलती है, क्योंकि अपनी पहुंच के घेरे फैसला मन के जदों तुर पैंदा ना मन।

आफत है। वेद लिखने वाला लिखे, जिन्हें को भी पहुंचाए उन्होंने करे ना, ये थोड़ा है जिन्हें पहुंचाए भी छड़ देवे, जिन्हें गा सकता है वो गाए, गाना गुना नहीं, पर फैसला ना करे कि जो कुछ मैं रब प्रति कह रहा ये आखिरी, मैं कुदरत नु जान लिया, मैं कादर नु समझ लिया, बस इस गल का फैसला हो में बिल्कुल ना करे, जे करेगा तो सिर पार हो रब नु छोटा कर रहा होगा, अकाल पुरख नु छोटा कर रहा होगा। इसलिए गुरु कहने लगे लिखना बोलना अखरों का संग्रह करना गुना नहीं, क्योंकि इन्हों बिना भी संसार नहीं चलता। दुनिया की हर एक चीज जी है इन्हें अखरों के मोहताज है।

जिनने ज्ञान ने, जिनने गीत ने, ते जिहड़े गुणां नूं गाउण वाले ने, विचारण वाले लोग ने, वह भी अखरां दे मोहताज ने। गाण दा की हुंदा है? विचों कुछ कढ़ना। लफ्ज बड़ा प्रचलित है जिमीदारी विच ना, किसान जदों फसल वढ़दा है ते फिर गाह पाउंदा है, चिट्टियां दे विच दाणे हुंदे ने। जिमीदार कोलों पुछे, जदों फसल वढ़दा है ना ते उदों कणक दे सिट्ठियां दे विच दाणे हुंदे ने, अजे बाहर नहीं निकले हुंदे, विच हुंदे, उत्ते हुंदे, छिल्लड़ चढ़िया हुंदा है। ते किसान ने छिल्लड़ की करना, उन्हूं ते दाणे चाहीदे ने, ते दाणे सिट्ठियां दे विच ने, ते सिट्ठियां दे विचों दाणे कढ़न लई उह गाह पाउंदा है। उहदे पुछियो किसान कोल, उह गाह पाउंदा है। ते जदों गाह पाउंदा है ना, ਉਦੋਂ ਸਿੱਕਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਛਿੱਲਣ ਲੈ ਕੇ ਦਾਣੇ ਬਾਹਰ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਛੁਪੀ ਹੋਈ ਚੀਜ਼ ਬਾਹਰ ਆ ਜਾਂਦੀ। ਗੁਣ ਵੀ ਜੀਵਨ ਦੇ ਕਈ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਛੁਪੇ ਹੋਏ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪਛਾਣ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਛੁਪੇ ਹੋਏ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਛਾਣ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਉਹ ਵੀ ਕਿਸੇ ਵਿਦਿਅਕ ਢੰਗ ਨਾਲ ਗੁਰਮਤਿ ਗਿਆਨ ਦੀ ਰੋਸ਼ਨੀ ਵਿੱਚ ਗਾਹ ਪਾ ਕੇ ਹੀ ਕੱਢੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਨੇ।

खूबसूरत रास्ता है। वो एक कर्म करत हो वह ने कर पाव करी चल, इन्हें भी कर्म नहीं करना, करी चल पर नेकर्म होके करी चल, अपने कर्म से निर्भर न कर। बोल पर अपने बोल नू आखिरी सीमा न समझ, फैसला न समझा। लिख पर अपने लिखन दी कलम दे अखरां नू आखिरी रेखा न समझ। ओ रूप न रेख न रंग किछ है, इसलिए कर्म कर जिन्नी क तेरी पहुंच है, ये नहीं छड़ दे पर निकर्म होके कर। कर्म करत होवे ने कर्म, इस वैष्णो का निर्मल धर्म। इन्हों शब्द नाल से मांगा जा चुका फतेह बुलाओ। वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह।

0: अद्वैत रूपी ब्रह्म है, अचारण पे रखा करता है। गुरु कृपा करे ताकि सानू उस एक दी समझ पै जाए।
1: आव हो संत जन हो गुण गावा है गोविंद केरे राम।
0: वो आम करके कई सानू गुरमुख प्यारे कह देंदे भाई साहब गुरु को जान दा की फायदा है। साडे बच्चे प्रदेशों में जाते ने ते दस दस साल उन्होंने पक्की रेजिडेंसी लैण वास्ते तरले करने पैंदे ने ते किसी नूं मिलदी ते किसी नूं नहीं। लेकिन गुरु नानक का घर अजिहा है इत्थे आउंदिआं सर गुरु ने संत कह दिता। भावें आपां पापी हाँ भावें आपां पुन्नी हाँ भावें आपां बुरे हाँ भावें आपां भला है लेकिन धन गुरु नानक पातशाह दे घर विच आउंदे सार सानू गुरु ने एक बहुत वड्डा सन्मान दिता। आख्या संत संत की है गुरमुखो संस्कृत भाषा दे विच एक लफ्ज आउंदा सुत ते सुत दा अर्थ हुंदा बच्चा पुत्र। पंजाबी च आपां पुत्र कहिंदे आ पुत कह दिंदे आ ते संस्कृत च कहिंदे ने सुत। जिहड़ा उह सुत है उह मां प्यो दे संबंधां तों पैदा हुंदा है। ना कली मां बच्चे नूं जन्म दे सकदी है ना कला पिता दे सकदा है। माता ते पिता दे संबंधां तों पुत्र आया सुत आया। सतगुरु ग्रंथ सच्चे पातशाह कहिंदे ने मात पिता बिन बाल ना होई। इसे प्रकार जिहड़ा संत लफज है जिवें मां ते बाप तों बच्चे की उत्पत्ति बच्चे का जन्म इसे प्रकार सतगुरु ग्रंथ सच्चे पातशाह कहिंदे प्यारियो संत बनन वास्ते दो चीजां लाजमी ने जिहड़ियां एक सत दूजा संतोख। जदों ये सत ते संतोख दोवें इकट्ठे हो जाण उहदे चों संत पैदा होगा। अगर सत नहीं ना बोलता सत दा धारनी नहीं वो संत नहीं। जिहड़ा संतोख दा धारनी नहीं वो संत नहीं। जदों सत ते संतोख दोवें इकट्ठे हो जाण उहनूं कहिंदे ने संत। मेरे पातशाह कहिंदे ने आवहो संत जनो ते नाल गुरदेव ने लफ्ज वरत्या जन जनो जन कहिंदे ने दास नूं। संत ओह है जिहदे अंदर दासा भाव है। मैं किसी ग्रंथ विच बहुत अजीबो गरीब उदाहरण पढ़ी तो मेरा मन हिल गया कि संत एडी उच्ची अवस्था का ना है। उस ग्रंथकार ने एक उदाहरण दिते एक रब का प्यारा संत नगर तो बार बार रब रब करता बंदगी करता परमात्मा की। याद रखना दुनिया का कोई मनुख नहीं जो लोभी ना होना। तुम जिन्ना मर्जी अपने आप नरम कर लो जिन्ने मर्जी दयालु कृपालु बन जाओ लेकिन यह कहना कि मेरी विरोधता नहीं ये बिल्कुल गलत है। इन्ना जरूर है किसी के विरोधी घट हो गए किसी के बहुते हो गए पर विरोधी लाजमी हो गए। किन्ना बंदा चंगा होवे किन्ना त्यागी विरागी होवे किन्ना दानी होवे किन्ना भजनीक होवे लेकिन मुखालफत लाजमी है।